गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रेडियो प्रस्वानी 1701 AM सुनने वाले सभी लिसनर्स को सताक्षी की प्यार भरी गुड मॉर्निंग। वैसे इसके पहले कि आपको आगे लेकर चलूं, ये कहना है कि भाई अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि आसमान में उम्मीदों के रंग बिखर चुके हैं, हवाओं में एक नया सांस है और कैलेंडर पर एक खूबसूरत ब्रांड न्यू दिन मुस्कुरा कर आपका स्वागत कर रहा है। और इस ब्रांड न्यू दिन के साथ, इस नई नवेली सुबह के साथ, मैं आ गई हूँ आपके लिए आपका अपना इट हैपेंस का साथ लेकर। जी हाँ, तो ये जादुई पल हैं, क्योंकि ये पल हैं आज के दिन के, आज के दिन की शुरुआत के और कुछ बेहतरीन लम्हों के। इन लम्हों को हम और भी खास बनाते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने अपनों के लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मॉर्निंग इट हैपेंस की एक बढ़िया से गाने के साथ। दोस्तों, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ और बातें मॉर्निंग की हमारी जारी रहेंगी, लेकिन शुरुआत गानों से होनी चाहिए ना। तो इसे सुनिए और इसके उस पार देखते हैं कि क्या क्या आपके लिए छेड़ा जाए, क्या बात आपसे की जाए। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी, एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग खास तौर से उन्हें जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास, जी हाँ, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है। जन्मदिन बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारक हो। और भाई ये दुआ है हमारी कि ये जन्मदिन जो है ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे हो और आपकी सारी विशेज जो है वो इस बर्थडे पूरी हो। और जिनके लिए आज वेडिंग एनिवर्सरी है और बहुत ही खास दिन है, उन सबको उनकी वेडिंग एनिवर्सरी की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। याद रखिए, प्यार होना आसान होता है लेकिन प्यार निभाना जरा मुश्किल होता है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ इश्क का सफर यूं ही निभाते रहें। इसी विश के साथ अभी विश करेंगे उन्हें भी जिनके लिए है आज का दिन स्पेशल और खास। सो आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए आपके लिए प्ले करती हूँ अगला ट्रैक, के प्लस टू रेडियो प्रिस्वानी 1701।

0: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। वैसे जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, जो अभी भी आंखें मल के उठने की कोशिश कर रहे हैं, उठ जाइए, क्योंकि दिन एक बार शुरू हो जाए तो फिर भागते देर नहीं लगती है। और एक बार ये दिन अगर भागना शुरू हो गया तो फिर आपके सारे काम ना मिसमैनेज होते चले जाएंगे। हाँ, तो इसलिए प्यार से उठिए ताकि खुद के लिए, खुद के एहसासों के लिए, खुद के जॉगिंग के लिए, वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए थोड़ा सा वक्त आप निकाल सकें। इसलिए टाइमली उठिए और चलिए आपके इस बेहतरीन टाइम के नाम जो इस वक्त आप खुद को देने वाले हैं, खुद के लिए जो वक्त इस मॉर्निंग आप निकालने वाले हैं, उस टाइम के नाम ये अगला ट्रैक एंजॉय कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

अक्सर हम ये सोचते हैं कि यार जो हुआ कल उसका असर हमारे आज पर पड़ेगा। यानी अगर कल कुछ जिंदगी में अंधेरा था, कुछ पॉजिटिव साइन नहीं मिला था कल, या कुछ नेगेटिव बातें हुई थी, कुछ नेगेटिव लोग आपको हर्ट कर गए थे, तो आज भी उसका असर जो है वो आप पर रहेगा। लेकिन देखिए, जो हुआ वो कल हुआ, और कल चाहे जैसा भी था वो गुजरा हुआ कल था। लेकिन आज ये ऊपर वाले का दिया हुआ वो ब्लैंक पेज है जिस पर आप अपनी पसंद की कहानी लिख सकते हैं, जिस पन्ने से, जिस पेज से आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। तो बस इस शुरुआत को अपने जिंदगी का एक मेन पेज बनाइए, और जो कल हुआ, बीता हुआ, जो आपका एक्सपीरियंस रहा कल के साथ, उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और इसी बात पर एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ, एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रिस्वानी। आप सुन रही हैं मेरे साथ इट हैपेंस।

बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: अरे मैडम आइए आइए, कैसी हैं आप? ये रहा आपकी शादी का कार्ड।
1: अरे वाह,
2: लाइक इट?
3: या इट्स नाइस।
0: भैया खुद डिजाइन करके गए थे?
1: ये रहा डिजाइन।

या इट हैपेंस सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी पर और इट हैपेंस में आपका साथ सताक्षी दे रही है। वैसे आप हो सकता है कि इस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हो या कॉलेज जाने की तैयारी में हो या फिर घर पर रहकर आप अपने दिन को प्लान कर रहे हो। चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे जैसे भी ये दिन आपको बिताना हो, एक बार मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखकर मुस्कुराइएगा जरूर, क्योंकि आपकी जो स्माइल है ना, ये सिर्फ एक स्माइल नहीं है, एक ऐवी स्माइल नहीं है कि बस हंस दिए, है ना, ये स्माइल बहुत प्यारी है। और ये स्माइल जो है ये आप में लेकर आती है कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस जिसकी आज आपको बाहर जरूरत हो सकती है, घर पर जरूरत हो सकती है, अपने साथ बिताए लम्हों के साथ जरूरत हो सकती है। तो उसी स्माइल के नाम चलिए ये गाना प्ले करते हैं, अभी इसे सुनिए और कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ यूं ही इंजॉय करते रहिए सुबह को इस मॉर्निंग इट हैपेंस में।

हेलो वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसी बने हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.0 FM ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असीं ढेर सारियां थोड़े नाल थोड़ियां मेरिया अपनियां सब दियां कुछ यादां तां असीं कर लवांगे, कुछ किसे दियां गल्लां कर लवांगे, कुछ गीत ज्यादा सुनांगे। फिलहाल थोड़ी पसंद है मेरी पसंद है सब दी पसंद है रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा। बस थोड़े सुनेहियां दा तां इंतजार है, तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बिरसोनी 101.0 FM साडे फेसबुक पेज है जी, bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आईडी है, जरिया जिहड़ा भी तुहानूं चंगा लगदा है वो अपनाओ, पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुण वापस आउंदी हां।

0: that's not just a movement. It's a mentality. It's a lifestyle. It's Ninja Nation.
1: बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाने वन सरों वाले एम से जी आर जे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए हो। देखो सब तो पहला गल करते हैं फिल्म दे बजट की। देखो किसी मूवी का बजट उसके हिट या फ्लॉप होने के पैमाने का सब तो वड्डा फैक्टर होंदा। फिल्म की कैटेगरी तय करन तो पहला कुछ चीजा समझना जरूरी होंदिया ने, जिवें लैंडिंग कास्ट, इस विच प्रोडक्शन दे खर्चे शामिल होंदे ने जिवें एक्टर्स दी फीस, क्रू, सैट दे खर्च वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा प्रिंट ते विज्ञापन यानी एडवरटाइजमेंट, ते इस विच ओ खर्च आउंदा है जो किसी मूवी दी मार्केटिंग ते प्रमोशन विच खर्च होंदा होंदा है। हुण इस तों बाद जानना तुसीं इह हैगा कि किवें तय होंदा है हिट या फ्लॉप, इही दसदे आं। पप्पी लै गीत सुणो।
2: It's Black Lives.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। हुण जिहड़ी मैं वर्ड दी गल कर रही हां, शायद कईयां ने पहली बार सुनिया होना है, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हुंदा है? स्लीपर हिट तो सिंपल भाषा विच समझिया जावे तो स्लीपर हिट ओ फिल्म हुंदी है जो बिना किसी वड्डे शोर शराबे भारी कंपरकम प्रमोशन या सुपरस्टार दे रिलीज हुंदी है। शुरुआत विच इसकी कमाई बहुत घट पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ ते दम ते फिल्म रफ्तार फड़दी है ते फाइनली बॉक्स ऑफिस ते ब्लॉकबस्टर साबित हुंदी है। जिवें सैयारा, कांतारा, 12वीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

पूरी उम्मीद है कि थानू ये सब कुछ जरूर समझ आ गया होना है ना, जरूर समझ आ गया होना, क्योंकि जेडे बॉलीवुड लवर है कि बॉलीवुड नहीं मूवी लवर्स है कि नहीं, बेशक को कोई भी बॉलीवुड दी देखते हो, टॉलीवुड दी देखते हो, हॉलीवुड दी देखते हो, साउथ दी देखते हो, उन्होंने ये पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगते होंगे या नहीं तो थोड़ा जरूर वधिया लगे होने हैं। तुसी बाकी जरूर दसो सानू कि थोड़ा किस तरह की जानकारी तुसी चाहते है। क्यों रेडियो बिसवानी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, तो bisawani@bisawani.com साडी ईमेल आई डी है। सर जेड़ा भी अपना चाहते हो अपनाओ, साडा गलबात जरूर करो। बाकी कल करते मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: The Total Focus Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association, QFFA. From 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane. With 32 teams already confirmed, participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family. Live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar. Connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
6: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। और सबसे पहले आपको हैप्पी फ्राइडे। जी हाँ, फ्राइडे आ गया है, मस्ती आ गई है, झूमेंगे हम, नाचेंगे हम, गाएंगे हम और साथ में गुनगुनाएंगे हम। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से आ जाइए क्योंकि फ्राइडे का प्रोग्राम ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि हम एकदम मतलब तड़क भड़क मजेदार गाने आपके लिए प्ले करते हैं। क्योंकि भाई फ्राइडे की खुशी जो है वो ऐसे ही सेलिब्रेट होती है। फ्राइडे मतलब पार्टी, पार्टी मतलब फ्राइडे, और ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ चलती हैं हाथ मिलाकर। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, जल्दी से शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। लेकिन सबसे पहले हेल्दी रिचुअल प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मंडे हो या फ्राइडे, ट्यूजडे हो या थर्सडे, वेडनेसडे हो या कोई भी दिन, हम ये रिचुअल जरूर प्रैक्टिस करते हैं। ये रिचुअल है हेल्दी रिचुअल, जो कि डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से रिलेटेड है। कैसे डीप ब्रेथ एक्सरसाइज हमें तैयार करती हैं, कैसे लंबी गहरी सांसें लेने से हमें बहुत अच्छा फील होता है, सुकून फील होता है, हमें बिल्कुल भी बुरा फील नहीं होता, स्ट्रेसफुल फील नहीं होता, और अगर हम गुस्सा में हैं तो वो गुस्सा भी शांत हो जाता है। आइए करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ बिना देर किए शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से गाने के साथ। और आप सोच रहे होंगे कि कौन सा गाना जो है मैं प्ले करने वाली हूँ, कौन सा गाना होने वाला है। वेल, वो है बंधु 2.0। ऑल द बंधु, आई मीन तुम ही हो बंधु, जो है वो मेरा ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि वो पहली कॉकटेल का है। पर चलिए ये भी ठीक है, और ये भी वाइब करवा रहा है लोगों को, क्योंकि उसमें ज्यादा चेंजेस है नहीं, लेकिन जो चेंजेस हैं वो गड़बड़ चेंजेस है, उसके बारे में नहीं जाएंगे। सुनते हैं इसको, करते हैं बात और भी बहुत सारी, लेकिन पहले प्रोग्राम की शुरुआत।

वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट मूवीज भागम भाग. मतलब वो कल्ट फेवरेट मूवीज होती है ना, जैसे छुप छुप के, हेरा फेरी, भागम भाग, ये कुछ मूवीज जो है वो आपको हमेशा मजा आता है इनको देख के. आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो. तो ये गाना सुना के मुझे लगता है हमें ये कॉलिंग तो मैंने दे दी है आप सबको कि कैसे आप भागम भाग इस वीकेंड देख सकते हो. जी हाँ, देखिए और इंजॉय कीजिए और फिर मुझे बताइए आपको कैसी लगी, इनकेस आपने नहीं देखी है. बट ऐसा हो नहीं सकता है कि आपने भागम भाग नहीं देखी होगी, बट इन केस नहीं देखिए तो जरूर देखिए. इसी के साथ टेम्परेचर यानी कि मौसम की बात कर ली जाए अब. जी हाँ, सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मैंने कहा था. अच्छे से धूप निकलेगी, बहुत ही अच्छे से धूप निकलेगी और आपको भर भर के वाइटमिन डी जो है वो मिलने वाली है. अगर अभी की बात की जाए तो 26.3 डिग्री सेल्सियस के करीब है और फील आपको हो रहा है 25.2 डिग्री सेल्सियस के करीब. कितना सुहाना मौसम है, राइट? मतलब क्या कहूं मैं इसके बारे में. पहले ही मैंने कहा था कि कैसे आपको मजेदार मौसम मिलने वाला है और वो मिला. चलिए इसी के साथ 40% चांसेस बारिश के भी है, लेकिन ऑफकोर्स वो कहीं कहीं पर है और जितना मैं देख पा रही हूं मुझे क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है वो बारिश की बूंदे और छींटे पड़ सकते हैं. इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम फेयर. और आज के साथ अब कल की बात कर ली जाए यानी कि सैटरडे की, तो अगेन भर भर के आपको मिलने वाली है वाइटमिन डी, यानी कि सूरज पूरी तरह से अच्छे से चमकता हुआ मुझे नजर आ रहा है विद 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. मतलब आज के मुकाबले टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा गिरता हुआ दिख रहा है मुझे, लेकिन सूरज जो है मुझे अच्छे से निकलता हुआ दिख रहा है और बादल मुझे नहीं दिख रहे हैं अभी के लिए. एटलीस्ट इसमें चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि मौसम अपनी चाल चलता है, हमारी नहीं सुनता, वो हम सबको पता है. जी हाँ, और संडे की बात की जाए तो आपको मैं बता दूं कि 40% चांसेस है बारिश होने के विद 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो फिर से तापमान जो है वो गिरता हुआ आपको नजर आएगा. जो आज आपको टेम्परेचर मिला है ना, वो अब थोड़े दिन आपको फिर से नहीं मिलने वाला है. सो आज आई होप आपने बाहर निकले हो, आपने इस खूबसूरत सी सूरज की रोशनी में अपने आप को बैठाया हो और कुछ अच्छा सा यमी सा खाया हो, क्योंकि विटामिन सी कंज्यूम करने का जो मजा आता है ना, जो आप सूरज के सामने बैठते हो, सूरज के रोशनी में बैठते हो, उसका मजा कुछ और ही है. एनीथिंग, जी आप कुछ भी खा सकते हो, बीट टैंजरीन्स, मैंडरिन्स, यू नो व्हाट, एनी काइंड ऑफ सिट्रस फ्रूट, ग्रेप फ्रूट और पोमेलो, लाइक एनीथिंग यू कैन हैव, लेकिन सूरज की रोशनी में उन्हीं का सबसे ज्यादा मजा आता है. सो या दैट्स इट, ये है मौसम का हाल आज का और वीकेंड का. और अब जरा जाते हैं सीधा एक और जबरदस्त सा गाना आपको सुनाते हैं.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: है वो।
1: भाई जिसे देखा है और वो कौन है अनजानी, उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उस शो के बारे में जो कि काफी पॉपुलर हो रहा है। जी हाँ, उतना ही पॉपुलर जितना कि शायद गेम ऑफ थ्रोन्स हुआ था। जी हाँ, अभी वो अपने तीसरे सीजन में है और अब उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ गई है। जब पहला सीजन आया था तो पीपल वर लाइक कि नो, इट्स नॉट एज गुड एज ऑफकोर्स गेम ऑफ थ्रोन्स, एंड ऑफकोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट हाउस ऑफ ड्रैगन। जी हाँ, सो अगर आप लोग गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन हो और अगर आपने हाउस ऑफ ड्रैगन को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आई वुड से कि अब आप चेकआउट उसे कर सकते हो, क्योंकि उसके तीन सीजन आ चुके हैं। जी हाँ, इससे पहले मैंने इसे बहुत ज्यादा रेकमेंड कभी भी नहीं किया था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि ये उतना अच्छा नहीं है जितना कि गेम ऑफ थ्रोन्स था। बट अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टार्टिंग के सीजन्स को देखोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ओके, इट वाज आल्सो मतलब गुड, बट नॉट दैट गुड। वो बाद में हुआ। जी हाँ, जब बाद में इसके और सीजन्स आए तो

उसके बाद वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया लोगों में, फैंस में, कि लोग इसके लिए क्रेजी हो गए. सो हाउस ऑफ ड्रैगन जो है वो भी HBO का बनाया हुआ है और ये गेम ऑफ थ्रोन्स का स्पिन ऑफ है. जी हाँ, और प्रीक्वल आप कह सकते हैं. जी हाँ, ये ड्रैगन फैमिली का, टारगेरियन फैमिली पर फिल्माया गया शो है. जी हाँ, टारगेरियन फैमिली को इसमें सेंटर किया गया है और दिखाया गया है कि कैसे किंग्स लैंडिंग, जो कि लिटरली वो आयरन थ्रोन आपने देखी है गेम ऑफ थ्रोन्स में, वो कैसे बनी, किसने बनाया किंग्स लैंडिंग. या एग्जैक्टली, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको नजर इसमें ही आने वाली है. सो अगर आपने हाउस ऑफ ड्रैगन चेकआउट नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि उसको चेकआउट करके ही आपको असली मजा आने वाला है. जी हाँ, सो जी हाँ, HBO Max पे आप इसे देख सकते हैं. लेट मी नो आपको कैसी लगी, क्योंकि आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड, क्योंकि इसका जो तीसरा सीजन है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. मतलब हर जगह मुझे इसी की क्लिप्स दिख रही है, तो मुझे लगा कि मुझे अपने लिसनर्स को ये बताना जो है इसका वक्त हो गया है. बट ऑफकोर्स आप उसको नहीं देख सकते, इट्स नॉट अ PG-13 शो एंड यू कांट वॉच इट विद योर किड्स और फैमिली आई गेस, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स भी वैसे ही था. बट अदर देन दैट दिस शो इज ग्रेट. जी हाँ, यहां पर इसी के साथ एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ.

0: ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4,000 hectares ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: Samsung ki mala pe sim room hai. LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane. LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, बहुत बड़ा काम होने वाला है 4th of July वीकेंड को। जी हाँ, 4th of July क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है अमेरिकन्स के लिए, इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वेल 250th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं अमेरिकन्स इस दिन अपना। आप लोग बोलोगे कि ठीक है अमेरिकन्स मना रहे हैं तो हम क्यों इसके बारे में में बात कर रहे हैं? हम तो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि टेलर स्विफ्ट इसी वीकेंड शादी करने वाली है ट्रेविस कैल्सी से। जी हाँ, आप लोग बोलोगे रियली टेलर स्विफ्ट द मदर? जी हाँ, ऑफकोर्स अगर आप फैन हो टेलर स्विफ्ट के, अगर आप स्विफ्टी हो, तभी आप जान पाओगे कि मदर क्यों मैं टेलर स्विफ्ट को कह रही हूँ। बल ऑफकोर्स आई एम नॉट अ फैन ऑफ टेलर स्विफ्ट। या शी इज गुड बट आई एम नॉट अ फैन। आई मीन आई डोंट आइडलाइज हर लाइक क्रेजी, बट पीपल आर क्रेजी अबाउट हर। मतलब टेलर स्विफ्ट जो है वो 2 बिलियन की नेटवर्थ को क्रॉस कर चुकी है एंड शी इज द ओनली ओनली ओनली म्यूजिशियन जिन्होंने सिर्फ म्यूजिक के बल पर ही इस लेवल को अचीव किया है। जी हाँ, इस लेवल की जो है वो नेटवर्थ उन्होंने अचीव किया। मतलब नो एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, कोई भी बिजनेस उन्होंने नहीं किया, कुछ नहीं किया। शी इज जस्ट अ म्यूजिशियन और म्यूजिक के बल पर ही वो इस लेवल को अचीव कर पाई है। तो यहां पर ऑफकोर्स हम उनकी नेटवर्थ के बारे में बात करने नहीं आए हैं, वेल ऑफकोर्स उनकी शादी के बारे में बात करने आए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी वीकेंड शादी करने वाली है टेलर स्विफ्ट। अब आप लोग बोलोगे कि कहां हो रही है ये शादी, आगे बताओ। वेल ये हो रही है MSG में। आप लोग बोलोगे MSG? वेल इट्स मैडिसन स्क्वायर गार्डन। जी हाँ, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में ये शादी होने वाली है। आप लोग बोलोगे कि इतना बड़ा वेन्यू, मतलब वो कॉन्सर्ट कर रही है, ये शादी कर रही है, क्या चल रहा है? वेल, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा, बिकॉज टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस कैल्सी लिटरली इस दुनिया में कहीं भी शादी कर सकते थे। जितनी उनके पास वेल्थ है उस हिसाब से तो वो चांद पर भी अपनी वेडिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करवा सकते थे, स्पेस में भी ऑर्गेनाइज करवा सकते थे। तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन, वाई MSG? वेल, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि हमें ऐसा लग रहा है कि कोई कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट करेंगी ये और सबको बोलेंगे कि ओके इट्स 4th of July बट अप्रैल फूल बनाया। जी हाँ, आई डोंट नो, पर मुझे भी ऐसा लग रहा है। बट ट्रेविस कैल्सी और टेलर स्विफ्ट जो है वो कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी एंगेजमेंट की थी। द प्रपोजल वॉज रियली रियली मैजिकल। वो इतना मैजिकल था कि सब लोग ये कह रहे थे कि वाह, प्रपोजल हो तो ऐसा हो। ट्रेविस कैल्सी ने कोई भी वो नहीं छोड़ा, कुछ भी वो गुंजाइश नहीं छोड़ी कि टेलर स्विफ्ट को वो प्रपोजल पसंद ना हो। जी हाँ, सो MSG में करने वाले हैं ये शादी, जो कि बहुत ही बड़ा वेन्यू है। और ऑफकोर्स टेलर स्विफ्ट की शादी है तो बनता भी है बहुत बड़ा वेन्यू। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि MSG यानी कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन जो है वो कोई नॉर्मल वेन्यू नहीं है, इस पर पहले भी बहुत बहुत लेजेंडरी चीजें होती रही हैं, तो क्या आप सुनोगे? चलिए हम आपको बताते हैं कि टेलर स्विफ्ट की शादी से पहले क्या क्या लेजेंडरी इस वेन्यू पे हुआ है, और फिर और भी बातें करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: है। अब कौआ काटे या सांप डसे, तूने प्यार का जहर पिला दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराब।
1: दोस्तों आप बोलोगे कि निव्या शर्मा ऐसे तो तुम कहती रहती हो, लिकर इज बैड फॉर हेल्थ, एल्कोहल इज बैड फॉर हेल्थ, गाना देखना क्या प्ले कर दिया, हमको शराबी बना दिया। अरे अब तो मतलब आपको तो पता ही है बॉलीवुड में और हिंदी फिल्म जगत में ऐसे बहुत सारे गाने जो कि बहुत सही है, पर आपको सीखना क्या है? वेल, अच्छी चीज है, जो बुरी चीज है वो नहीं सीखनी है, एंड यू नो व्हाट आई मीन। चलिए इसी के साथ यहाँ पर अब मैं आपको बताने वाली थी कि MSG यानी कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन, जिसमें कि अपेरेंटली शादी कर सकती हैं टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी, वहां पर उससे पहले क्या क्या लेजेंडरी हुआ है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, द न्यूयॉर्क निक्स ने अपना पहला चैंपियनशिप यहीं जीता था, द LA लेकर्स के खिलाफ। जी हाँ, इसमें 1962 में मार्लन मुनरो ने परफॉर्म किया था हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्रेसिडेंट टू, ऑफकोर्स टू JFK कैनेडी, मिस्टर कैनेडी को। हाँ हाँ, आपको तो बताइए, एंड इफ यू डोंट नो अबाउट देम You should। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और शादी पहले भी हुई थी, जब सिंगर स्लाय स्टोन ने शादी की थी कैथी सिल्वा से। जी हाँ, which is also kind of legendary, but the most legendary was the fight of the century। जी हाँ, fight of the century जिसे कहा जाता है, वो भी MSG यानी कि Madison Square Garden में हुई थी, and I'm talking about the fight between Muhammad Ali and Joe Frazier। जी हाँ, वही legendary fight वो हुई थी MSG में, क्योंकि उनको इतना बड़ा venue चाहिए था इस fight के लिए कि लोग सब इस चीज को witness कर सके। इसके अलावा 1939 में हिटलर ने भी यहाँ रैली की थी। जी हाँ, 1939 में MSG में यानी कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिटलर तक ने रैली की है। सो आप कह सकते हो कि इट इज अ काइंड ऑफ वेरी यूनिक वेन्यू टू गेट मैरिड, एंड ऐसा नहीं है कि वो पहली बार शादी कर रहे हैं या पहली शादी यूनिक ही हो रही है, पहले भी हो चुका है, बट द थिंग इज कि इतना बड़ा वेन्यू और या आई गेस जिस हिसाब से टेलर स्विफ्ट को पूजा जाता है, ये वेन्यू ठीक रहेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ਓਏ ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
1: ਓ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो है कि अल्फा वीकेंड शुरू हो गया है, और अब आप लोग बोलोगे कि अल्फा वीकेंड व्हाट इज दैट निविया? वेल वेल वेल, ऑफ कोर्स अल्फा वीकेंड मतलब अल्फा मूवी रिलीज हो गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, अल्फा मूवी जिसमें आलिया भट्ट, बॉबी देओल और शर्वरी बाघ आपको नजर आने वाले हैं, और कोई नॉर्मल कैरेक्टर में नहीं बल्कि बहुत ही धुरंधर कैरेक्टर में। या धुरंधर को हम फिर से याद कर रहे हैं। वेल ऑफ कोर्स, धुरंधर को याद करने के हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं जो कि नेटफ्लिक्स पर लगी हुई है, बट अभी हम बात कर रहे हैं अल्फा के बारे में। सो अल्फा, जैसे मैंने आपको बताया कि रिलीज हो गई है आज, आप देखिए वीकेंड पे, मुझे बताइए आपको कैसी लगी, और क्या आपको आलिया भट्ट का वो कैरेक्टर पसंद आया या नहीं। आलिया भट्ट इज अ वेरी वेरी गुड एक्ट्रेस और उसमें कोई भी दो राय नहीं है, और ऐसे में आपको कैसी लगी जरूर मुझे बताइएगा अल्फा। इसी के साथ वेलकम टू द जंगल जो है फैमिली मूवी, यू कैन लिटरली वॉच इट विद योर फैमिली। बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें, तो मुझे लगता है आपको पूरी फैमिली के साथ जाना चाहिए इस मूवी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स के लिए ज्यादा ऑडियंस लगेगी, राइट? सो या वेलकम टू द जंगल जो है वो ऑलरेडी रिलीज हो गई थी पिछले हफ्ते, अच्छा काम कर रही है बॉक्स ऑफिस के फ्रंट पर, और आप इसे देख सकते हैं। कॉकटेल 2 लगी हुई है, इट्स नॉट अ PG-13 मूवी, यू कैन वॉच इट विद योर पार्टनर बट नॉट विद योर फैमिली, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स. सो या कॉकटेल 2 आप देख सकते हैं, ये सीक्वल है कॉकटेल का और नाम ही सेम है, कहानी तो है वो डिफरेंट है और गाने जो है वो भी डिफरेंट है. कुछ गानों के साथ थोड़ा सा कमाल करने की कोशिश की गई है लेकिन कमाल के बजाय उन्होंने बवाल कर दिया है. जी हाँ, दैट्स इट. इसी के साथ एक और मूवी जो कि लिटरली काफी सुर्खियों में बनी हुई है और वो है नागाबंधम द सीक्रेट ट्रेजर. जी हाँ, अब ये एक ऐसी मूवी है जिसका ट्रेलर ही इतना ज्यादा खतरनाक था कि जब इसका ट्रेलर देखा गया तभी लोग क्रेजी हो गए थे. जी हाँ, ये 4DX और 2D आपको दोनों में मिलेगी. और या ये एक मूवी है जो कि एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा, थ्रिलर, फैंटेसी सब कुछ सर्व करने वाली है आपको. सो गो फॉर इट. आई थिंक दैट कैन बी अ गुड यू नो वॉच. सो इसी के साथ कुछ और मूवीज है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक और मजेदार सा गाना आप सबको सुनाने वाली हूँ और उसके बाद मैं उसके बारे में बात करूंगी.

जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको मूवीज के बारे में बता रही हूँ जो कि आप इस वीकेंड देख पाओगे अपने नजदीकी सिनेमा घरों में। जी हाँ, काफी सारी मूवीज के बारे में मैंने बता दिया। अब एक मूवी जो कि बहुत ही स्पेशल है और जिसकी तारीफ हर जगह हो रही है, मैं वापस आऊंगा। जी हाँ, एक ऐसी मूवी जिसमें कहानी है दो प्रेमियों की जो कि देशों के अलग होने से बिछड़ जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर आपको आगे तभी पता चलेगा जब आप इस मूवी को देखोगे। सो इसमें दिलजीत दोसांझ है, वेदांत रैना है और साथ में है शर्वरी बाग, और इसकी तारीफ काफी ज्यादा हो रही है। प्लस इट्स अ इम्तियाज अली मूवी, तो तारीफ तो बनती है। मतलब इम्तियाज अली मूवी बनाते हैं ना, तो वो काबिले तारीफ ही बनाते हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं कुछ हॉलीवुड मूवीज की। सबसे पहले सुपर गर्ल, या सुपर गर्ल आप देख सकते हो अपने नजदीकी सिनेमा घरों में। इट्स अ हीरोइन काइंड ऑफ मूवी एंड सुपर मैन को तो जो है आपने देखा ही होगा। सुपर गर्ल जो है वो भी देखिए, क्योंकि ऑफकोर्स हमें महिला सशक्तिकरण भी करना है। जी हाँ, इसी के साथ टॉय स्टोरी 5 आप अपने बच्चों के साथ जाके देख सकते हैं। जी हाँ, इजिली आप अपने बच्चों के साथ जाके देख सकते हैं। प्लस इट्स अ मूवी जो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने टॉय स्टोरीज की बाकी मूवीज नहीं देखी है तो वो भी चेकआउट कीजिए, यू आर गना लव इट। इसी के साथ आप अपने बच्चों के साथ एक और मूवी देखने जा सकते हो, एंड दैट इज मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स। जी हाँ, एंड मिनियंस जो है वो हमारी कितनी पसंदीदा है इसके बारे में भी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ कल्ट फेवरेट मूवी। सो मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स भी आप देख सकते हैं अगेन अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। और अगर आप पंजाबी मूवीज के फैन हो तो कैरी ऑन जट्टा 4 इज हियर। जी हाँ, कैरी ऑन जट्टा 4 आ गई है, एंड ये पंजाबी मूवीज की बहुत ही सक्सेसफुल मूवीज में से आती है, लाइक जट एंड जूलियन, कैरी ऑन जट्टा। सो यू कैन ऑल्सो वॉच दिस मूवी। सो ये सारे के सारे रिकमेंडेशन हमने आपको दे दिए हैं, अब आप चूज कीजिए आपको क्या देखने जाना है। इसी के साथ यहाँ पर एक और जबरदस्त सा गाना।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, I'm Tulsi Kumar, and aap mujhe sun rahe hain Radio Brisbane.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan, and aap sun rahe hain Radio Brisbane.
10: Mera naam Dr. Kumar hai, aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. Ye saral hai, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
11: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं खबरों की दुनिया की. जी हाँ, खबरों की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे जी हाँ, भारत से. सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू, पहला जत्था कश्मीर पहुंचा. जी हाँ, भारतीय खबरों से शुरुआत हो रही है. सबसे पहले तो समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि श्रद्धालुओं का पहला जत्था जो कि अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहा है, बालटाल और नुनवान के दोनों बेस कैंप से रवाना होकर दक्षिण कश्मीर के हिमालय में समुद्र तल से 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ गया है. जी, इससे पहले 4,800 यात्रियों का पहला जत्था भारी सुरक्षा के बीच कश्मीर पहुंचा था. इस गुफा में प्राकृतिक रूप से निर्मित हिम शिवलिंग के दर्शन होते हैं. अधिकारियों ने बताया कि यात्रा शुक्रवार तड़के दोनों मार्गों से शुरू हुई. इनमें पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग और 14 किलोमीटर लंबा बालटाल मार्ग शामिल है. बीच बीच में बारिश होने के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बना रहा. उन्होंने बताया कि पुरुषों, महिलाओं और साधु संतों सहित श्रद्धालुओं के जत्थे सुबह होते ही दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम स्थित नुनवान बेस कैंप और मध्य कश्मीर के गंदरबल जिले के सोनमर्ग क्षेत्र स्थित बालटाल बेस कैंप में अपनी यात्रा पर रवाना हुए हैं.

जी दोस्तों, वही खबरों का सिलसिला चल रहा है। ईरान ने चेतावनी दे दी है अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान अमेरिका और इसराइल ने हमला किया तो मिलेगा करारा जवाब। जी हां, ईरान ने कहा है कि उसके सर्वोच्च नेता रहे आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान अगर अमेरिका, इसराइल और उनके सहयोगियों ने कोई कार्रवाई की तो करारा जवाब दिया जाएगा। जी हां, बीबीसी मॉनिटरिंग के मुताबिक ईरान के खातम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खामनेई के अंतिम संस्कार से पहले अमेरिका, इसराइल और उनके सहयोगियों को ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से बचने की चेतावनी दी है। ईरान की सर्वोच्च सैन्य कमान के प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि अंतिम संस्कार समारोह ये दिखाएगा कि ईरान जनता अली खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए अड़िग है। ये जानकारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी से जुड़ी तस्नीम समाचार एजेंसी ने 2 जुलाई को अपने टेलीग्राम चैनल पर दी। अब्दुल्लाही ने कहा कि हम शक्तिशाली ईरान के दुश्मनों, खासकर अमेरिका, ज़ायोनी शासन इसराइल और उसके क्षेत्रीय और क्षेत्र के बाहर के सहयोगियों को चेतावनी देते हैं कि वे किसी भी तरह की गलतफहमी या गलत आकलन ना करें। उन्होंने कहा कि ईरान की सीमा या क्षेत्र के खिलाफ किसी भी धमकी या आक्रामक कार्रवाई का जवाब ईरानी सशस्त्र बल कड़ा ऐसा देंगे जिसका उन्हें पछतावा होगा। तेहरान नगर पालिका में सांस्कृतिक और सामाजिक मामलों के उप प्रमुख मोहम्मद अमीन तवाकिलाजदेह के अनुसार 4, 5, 6, 7 और 8 जुलाई को अली खामनेई के अंतिम संस्कार में राजधानी तेहरान में 1.5 से 2 करोड़ के लोगों की संभावित भागीदारी को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं।

जी दोस्तों, खबरों की बात हो रही है, वहीं अमेरिका की इस योजना से ईरान हुआ खफा। अब्बास अराक्ची ने दी चेतावनी। जी हाँ, सो यहाँ पर भी ईरान की तरफ से एक चेतावनी आ रही है। क्या है, आइए जरा जानते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमान की ओर से आयोजित क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस बात को खारिज किया कि पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप पश्चिम एशिया में स्थिरता ला सकता है। बीबीसी की फारसी सेवा के मुताबिक अराक्ची ने पूछा, अमेरिकी सेंट्रल कमान ने हमारे क्षेत्र में सुरक्षा पैदा की है या असुरक्षा? इसका जवाब बिल्कुल साफ है, हमारी ताकतवर सशस्त्र सेनाओं ने यह साबित कर दिया है कि विदेशी खुद अपनी सुरक्षा में सक्षम नहीं है। हमारे क्षेत्र में शांति तभी स्थायी होगी जब वो व्यापक और समावेशी हो और उसमें किसी भी प्रकार का विदेशी हस्तक्षेप न हो। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम के उल्लंघन की खबरें आती रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में एक मालवाहक जहाज पर हमले के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए थे। इसके एक सप्ताह बाद ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों को चेतावनी भी दी थी।

जी हाँ दोस्तों, अब मिस्टर ट्रम्प के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, तो ट्रम्प रोस्टिंग सेशन में आपका स्वागत है। और यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये इंसान पहले जीसस बनने की कोशिश कर रहा था, फिर ये एटलस बनने की कोशिश कर रहा था, अब ये डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, तो एक नई AI वीडियो जो है वो ट्रम्प ने अपनी निकाली है, जहां पे ही इज टॉकिंग अबाउट TDS। अगर आप भी TDS से गुजर रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एंड आई एम योर डॉक्टर, डॉक्टर ट्रम्प, या दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। एंड पीपल आर लाइक, अरे भाई तुम डिसाइड कर लो तुम बनना क्या चाहते हो। तुम सब कुछ बनना चाहते हो तो ऐसे तो नहीं चलेगा। मतलब AI आ गया है इस दुनिया में, मतलब तुम हमारी फीलिंग्स के साथ इस हद तक खेलोगे, मतलब कुछ भी कर रहा है और कुछ भी करके हमको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि पहले जीसस बनने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद करने की कोशिश कर रहा था एटलस बनने की कोशिश कर रहा था, मतलब पृथ्वी को अपने कंधों पर उठा लिया था, और अब इन्होंने मेडिकल सेक्टर को अपने कंधों पर उठा लिया है अपेरेंटली, क्योंकि ही इज लाइक, यू नो व्हाट, आई एम डॉक्टर ट्रम्प, आई एम डॉक्टर ट्रम्प, आई डोंट नो, अपार्ट फ्रॉम अ बिजनेसमैन, ये क्या क्या बनने की ख्वाहिश रखता है बंदा, मतलब लिटरली। और ये AI वीडियो पे लोग जो है वो बहुत ज्यादा कॉमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि डिसाइड कर लो भाई, पहले तुम लॉर्ड जीजस थे, अब तुम क्या बनने की कोशिश कर, मतलब क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। बट या ट्रम्प इज ट्रम्प, मतलब ट्रम्प जो है वो सुबह उठते हैं और फिर कहते हैं कि यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, आज मैं ये बनूंगा, आज मुझे ये बनना है। किसी दिन ये लिटरली हनुमान जी का ना बनने की कोशिश करते हैं, लिटरली। अभी तो इनकी नजर जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी और सिर्फ क्रिश्चियन माइथोलॉजी पर ही पड़ी है, लेकिन यहां पर अगर इनकी नजर हिंदू माइथोलॉजी पर पड़ गई तो पता नहीं किसको ये चुनेंगे कि यू नो व्हाट, अब मुझे ये बनना है, क्योंकि पृथ्वी उठाने से काम नहीं चलेगा, पर्वत भी उठाना पड़ेगा। जी हाँ, मतलब आई हैव टू से कि ये इंसान हमारी हिंदू माइथोलॉजी से दूर रहे, बिकॉज ये कैन लिटरली डू इट। आपको एक और बात बताते हैं। जी हाँ, अब फिर से जो है ये इंसान नाटो के पीछे पड़ गया है, मतलब मिस्टर ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प जो है, और डोनाल्ड डक, उफ, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो पड़ गए हैं पीछे नाटो के। ही इज लाइक, यू नो व्हाट, हम $999 बिलियन खर्चते हैं। जी हाँ, जर्मनी इतना खर्चता है, फ्रांस इतना खर्चता है, ब्रिटेन इतना खर्चता है, सब कितना कम खर्च करते हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इतना खर्चा करते हैं, लेकिन क्या ये देते हैं हमें। जी हाँ, मतलब पहले ये जर्मनी के पीछे पड़े, फिर ये इटली के पीछे पड़े, फिर अब ये ब्रिटेन के पीछे पड़े हुए थे, अब इन्होंने सोच लिया कि ठीक है यार, मतलब एक एक करके पीछे पड़ने में ना मेरी एनर्जी बर्बाद हो रही है, मतलब इतने में तो मैं 4 AI वीडियो और बना दूंगा। जी हाँ, और 4 ट्वीट और कर दूंगा, सो ऐसे में इस टाइम को बचाना पड़ेगा और सीधा नाटो को मतलब पूरा एक बैग में डालो और पूरे ही लपेट में ले लो। सो दैट्स व्हाट इज डूइंग, फिर से नाटो के पीछे पड़ गए। कहते हैं ये छोटी छोटी कंट्रीज तो बिल्कुल भी जो है वो कुछ नहीं करती, बस इनको जो है वो सिक्योरिटी चाहिए। यूरोप से प्रॉब्लम हो गई है इस इंसान को। अगर आपको नहीं पता है तो डोनाल्ड ट्रम्प खुद फ्रांस से हेल करते हैं, मतलब फ्रेंच है ये, फ्रेंच। अगर इनकी फैमिली की बात की जाए, ट्रम्प फैमिली की, तो वो फ्रेंच फैमिली है जो कि आई थी। अब यहां पर आप देखिए ये खुद ही यूरोप के पीछे पड़ गए हैं। वेल, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाट ही इज सेइंग, बट द थिंग इज कि द अमाउंट ऑफ टाइम्स ये ट्वीट करते हैं, ये AI वीडियो बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा स्कैरी हो गया। मतलब हमको नहीं पता है कि हम सुबह उठेंगे तो ट्रम्प ने कौन सी वीडियो का जो है वो बॉम्ब फेंका होगा और क्या बनने की कोशिश की होगी। पहले तो लोगों के लिए ही जो है ये अच्छा और बहुत ही ग्रेट बनने की कोशिश करते थे, लोगों में रह करी, पर जब से इनको वो जो है ना अवार्ड नहीं मिला हुआ, नोबेल पीस प्राइज, तब से इनका दिमाग जो है वो सटक गया है। ही इज लाइक, यू नो व्हाट, ऐसे काम नहीं चलेगा, अब मुझे सीधा भगवान बनना है, दैट्स इट, भगवान के अलावा मुझे और कुछ नहीं बनना है और फिर ही काम होगा। लेकिन भगवान के साथ साथ ये डॉक्टर भी बन गए। आई डोंट नो व्हाट इज प्लानिंग, बट या ही इज अ स्कैरी मैन। या इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
6: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
5: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
6: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
5: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
6: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
7: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
8: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
9: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
10: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ फीफा वर्ल्ड कप की थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि पोर्चुगल भी पहुंच गया है सुपर 16 में, या आपने सही सुना, जो लास्ट 16 है उसमें पोर्चुगल पहुंच गया, और उसका मतलब है कि रोनाल्डो लास्ट 16 में पहुंच गए हैं और स्पेन से होने वाला है अब उनका मुकाबला। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने यानी कि पोर्चुगल ने क्रोएशिया को हराया है 2-1 से, और ऐसे में उन्होंने आखिरी 16 में अपनी जगह जो है बना लिया। और जैसे मैंने कहा कि स्पेन से मुकाबला होने वाला है, इसी के साथ स्पेन जो है वो भी आखिरी 16 में पहुंच चुका है, उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया है, जी हाँ, 3-0 से, यानी कि 3-0 से उन्होंने हरा दिया है ऑस्ट्रिया को, और उन्होंने भी लास्ट 16 में अपनी जगह बना लिया। पर आपको पता है सबसे ज्यादा खतरनाक टीम्स कौन कौन है इस सीजन में? जी हाँ, ऑफ कोर्स फ्रांस। मतलब फ्रांस ऐसे खेल रहा है जैसे कि वही ट्रॉफी लेकर जाने वाला है। लेकिन एक और टीम है जो कि लिटरली काफी दमदार खेल रही है अपने एक ही प्लेयर के बल पर, जी हाँ, और वो वाइकिंग्स के डिसेंडेंट्स हैं। जी हाँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वाइकिंग के डिसेंडेंट्स की अगर मैंने बात की डिसेंडेंट्स की, तो नॉर्वे की मैं बात कर रही हूँ, और नॉर्वे में कौन इतना कमाल का है उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जरूर देखिए, अगर नॉर्वे का मैच है, फ्रांस का मैच है, फिर तो बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि वो तो ऐसा खेल रहे हैं कि क्या बात है। जैसे मैंने कहा कि स्पेन जो है वो भी पहुंच गया है, पोर्चुगल जो भी पहुंच गया है, एंड अगेन ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट करने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है, एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड। इसी के साथ यहाँ पर अब एक और गाना आप सब के लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में बहुत जबरदस्त लोग हैं और ये तो टाइम टाइम पे प्रूव होता आया है। जी हाँ, आपने रॉबिन हुड का नाम तो सुना ही होगा। रॉबिन हुड क्या करते थे? अमीरों से लेते थे और गरीबों में बांट देते थे, अमीरों से छीनते थे और गरीबों में बांट देते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति जो है वो मेक्सिको में आजकल मिल रहा है। वेल ऑफकोर्स नोबडी नोज एग्जैक्टली वो पर्सन कौन है और पुलिस जो है वो तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है, बट अपेरेंटली रॉबिन हुड से हटके थोड़ा डिफरेंट काम करता है ये व्यक्ति, जिसको वहां का बैटमैन कहा जा रहा है। जी हाँ, सो एक बैटमैन जो है वो मेक्सिको में भी है, जो कि चोरों को, जो चोर हैं, जो कि बाइक्स पे घूमते हैं या बाइक्स को चुराते हैं या चीजों को चुराते हैं, उनको वो पकड़ता है और उनको बिजली के खंभों से बांध देता है, उनके माथे पर लिख देता है थीव यानी कि चोर, और जो साइड में चुराई हुई चीज होती है उसको भी रख देता है उनके बाजू में। पुलिस आती है, उनको पकड़ती है और जो चीज उन्होंने चुराई होती है वो उस बंदे को वापस कर देती है जिनसे उन थीव्स ने वो चीज चुराई होती है। अब आप लोग बोलोगे कि वाह, पुलिस का काम तो वो बंदा कर रहा है। या एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाई वी नीड हीरोज। आई मीन ही इज अ हीरो, लाइक लिटरली। आई डोंट नो अबाउट द हीरोज आर हीरोज कि इफ हीरोज आर हीरोज, बट ऐसे लोग ही हीरो हैं। मतलब लिटरली क्या खतरनाक काम है, राइट? मतलब चोरों को पकड़ना, उनको बिजली के खंभों से बांध देना, उनके माथे पे चोर लिख देना और साथ में उनकी चुराई हुई चीज भी रख देना ताकि पुलिस को परेशानी ना हो। अब पुलिस अपना काम नहीं करेगी तो किसी बैटमैन को तो आना पड़ेगा। आई डोंट नो इफ इट्स अ रियल बैटमैन और पर्सन इन द कॉस्ट्यूम ऑफ बैटमैन, और क्या वो बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहनता भी है, नोबडी नोज एक्चुअली। बट द थिंग इज, द थिंग्स he is doing is amazing. And हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो she भी तो हो सकती है, right? I mean, महिला सशक्तिकरण is important. So yeah, एक Batman या Batwoman जो है वो मेक्सिको की गलियों में घूम रही है, and I think we need that kind of Batwoman or Batman here in Australia, right? यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ स्वागत है आपका हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड में। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, ये कौन सा स्वागत है? स्वागत तो तुम बहुत देर पहले ही कर चुकी हो। वेल, प्रोग्राम की शुरुआत तो पहले ही हो गई थी, लेकिन अब एक फेवरेट सेगमेंट की शुरुआत हो रही है। और इसके साथ मैं फेवरेट इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरे लिसनर्स का भी बहुत ज्यादा पसंदीदा सेगमेंट है। पुराने गाने हैं, पुरानी बातें हैं, पुराने किस्से हैं, पुराने फसाने हैं, ये सब कुछ मिलने वाला है आपको इस सेगमेंट में। बिना देर की अपनी फरमाइश को लेकर आ जाइए। ऑफ कोर्स शर्त यही है कि पुराना होना चाहिए गाना, तभी तो बनेगा तराना। जी हाँ, जो गाना मैं सबसे पहले आपको सुनाने वाली हूँ इस सेगमेंट में, वो कल्ट फेवरेट है, किशोर दा का सबसे बेस्ट गानों में से एक है। मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज्यादा हिंट देने की जरूरत है। सुनते हैं इसको, फ्रॉम द मूवी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। और गाने के लफ्ज हैं, बोल हैं, मेरे महबूब कयामत होगी।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करे प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ किस्सा सुनाते हैं आपको जीतू जी का, यानी कि हमारे फेवरेट जितेंद्र। जितेंद्र बताते हैं कि ये उनके स्ट्रगलिंग डेज का किस्सा है जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। वो कहते हैं एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग हुआ करती थी बॉम्बे में, उसके तीन विंग्स थे, ए बी और सी। ए विंग में, सी विंग में मैं रहा करता था और ए विंग में प्रेम चोपड़ा रहा करते थे। जी हाँ, और कैसे वो प्रेम चोपड़ा के साथ उनकी दोस्ती शुरू हुई उसके बारे में भी है ये किस्सा। वो बताते हैं कि हमने दोनों ने ही, मतलब मैंने और प्रेम चोपड़ा दोनों ने ही गाड़ी रखी हुई थी जो कि हमने इंस्टॉलमेंट पे ली थी उस वक्त, और वो 32 दिन, महीने में 32 दिन खराब रहा करती थी। मतलब आपको पता ही है कि उसका क्या मतलब हुआ कि 32 दिन, मतलब वो पूरा का पूरा टाइम खराब रहा करती थी। कहते तो जब भी मैं और प्रेम चोपड़ा एक दूसरे को देख लेते थे अपनी अपनी बिल्डिंग से, तो हम एक दूसरे को देख के एकदम से शक्ल बनाते थे, एक्सप्रेशन बनाते थे कि ओके हम जल्दी जाना है, मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है किसी को देखने का, कुछ करने का, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, मुझे बहुत ज्यादा काम है। और फटाफट हम अपनी गाड़ी उठाते थे और फिर चले जाते थे फेमस प्रोडक्शन हाउसेस में, फेमस स्टूडियोज में, फिल्म स्टूडियोज में, जहां पर प्रोड्यूसर्स बैठा करते थे। और वहां पर हम क्या, हम स्ट्रगलिंग डेज ही कर रहे होते थे, हमारे स्ट्रगलिंग डेज चल रहे थे, तो हम वहां पर स्ट्रगल करने ही जाते थे। हम प्रोड्यूसर्स से मिलते थे, उनको बोलते थे हमारा ऑडिशन ले लो, हमें काम दे दो। तो कहते पहले तो हम ऐसा करते रहे, मतलब मैं और प्रेम चोपड़ा एक दूसरे को देख कर ऐसे दिखाते रहे कि हमें तो बहुत ज्यादा काम है। लेकिन जब हम एक दूसरे को वहीं पर मिल गए जहां पर वो फिल्म स्टूडियोज थे, जहां पर प्रोडक्शन हाउसेस बैठा करते थे, प्रोड्यूसर्स बैठा करते थे, तो हम दोनों को पता चल गया कि देखो हम कितने भी एक्सप्रेशन बना लें कि हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, हम बिजी नहीं है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो प्रेम चोपड़ा मुझे कहते हैं कि ठीक है यार, देख स्ट्रगल तो हम दोनों ही कर रहे हैं, तो हम पेट्रोल का खर्चा डबल क्यों दे रहे हैं, ऐसा करते हैं एक ही गाड़ी चला करेंगे और एक ही गाड़ी से एक ही बंदे का, मतलब एक ही गाड़ी का पेट्रोल लगेगा। स्ट्रगल दोनों कर रहे हैं, साथ में स्ट्रगल करते हैं। जी हाँ, मतलब पहले दोनों एक दूसरे को ये दिखा रहे थे कि हम तो बहुत ज्यादा बिजी हैं, यू नो व्हाट, वी डोंट हैव टाइम। बट बाद में जब मिल गए ऐसी जगह पर जहां पर स्ट्रगलिंग डेज नजर आ रहे हैं और स्ट्रगल करता हुआ जो बंदा नजर आ रहा है, तो फिर अपनी उस पर आ गए कि नहीं नहीं यार, स्ट्रगल ही तो कर रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर करते हैं। क्या ऐसे, मतलब बहुत ईगो दिखानी है ना, मतलब ऐसे बहुत अपना ताव दिखाना कि हम तो बहुत ज्यादा बिजी है, हमारे पास बहुत काम है, जब नहीं है तो सीधी सी बात है साथ में मिलकर स्ट्रगल करते हैं। तो जितेंद्र साहब ने जब ये सुनाया लोग लिटरली बहुत ज्यादा हंस रहे थे। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि बहुत ही खूबसूरत है।

दोस्तों गाना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, रफी साहब और लता जी का गाया हुआ। अगला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो भी रफी साहब का है, लेकिन यहाँ पर ये है ही मैन ऑफ बॉलीवुड यानी कि धर्मेंद्र जी का गाना, और ये फरमाइशी गीत है, मेरी तरफ से नहीं है बल्कि फरमाइशी गीत है, जो कि आया है हमारे बहुत ही खास लिसनर जस्सी जी की तरफ से। नाउ जस्सी जी हमें कॉल करते हैं और हमें बड़े ही अच्छे से बोलते हैं कि बाकी सब तो ठीक है निविया जी, बट आपने स्टार्टिंग में बोला कि लंबी सांसें लेने से गुस्सा भी शांत हो जाता है, मतलब डीप ब्रेथ एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब वो गुस्सा ही क्या जो लंबी गहरी सांसें लेने से ठीक हो जाए, और हम तो लंबी गहरी सांसें ले लेंगे, हम तो गुस्सा ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर सामने वाले ने लंबी गहरी सांस नहीं ली तो क्या होगा, वो तो हमको फोड़ तोड़ के चला जाएगा। एंड आई वाज लाइक या ओनली माय लिसनर्स कैन यू नो डू दैट, मतलब ये लूप होल्स जो है ना सिर्फ मेरे लिसनर्स निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच जस्सी जी, हमेशा आपके वो ये जो ह्यूमर आप सर्व करते हो ना, क्या कहा जाए, बहुत ही बाकमाल ह्यूमर है आपका। थैंक यू सो मच हमेशा हमारे प्रोग्राम को इतना प्यार देने के लिए, खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए। और अब गुस्से की बात हो रही थी और उन्होंने गुस्से से ही रिलेटेड बात की थी, तो उन्होंने जो फरमाइश किया है गाना वो भी गुस्से से रिलेटेड है। जी हाँ, आप लोग बोलो है गुस्से से रिलेटेड। वेल गाने का नाम है ये गुस्सा तेरा, सुभान अल्लाह, यहाँ गुस्से की तारीफ हो रही है। वेल गुस्सा करना इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ठप हो जाता है 3 से 4 घंटे के लिए 2 मिनट के गुस्से से। सो यू कैन इमेजिन कि गुस्सा करना इज नॉट अ वाइज डिसीजन। लेकिन हाँ, जैसे कि जस्सी जी ने कहा कि अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगी दुनिया। सो आप बताइए मुझे गुस्सा करना ठीक है या नहीं। एंड जस्सी जी ये रहा आपका गाना, थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका गाना।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल टॉप 10 हॉट 10 में, और इवनिंग वाइब में मुलाकात होगी मंडे को। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वेल एंजॉय करना है, इट्स फ्राइडे की इवनिंग, मतलब फ्राइडे यानी शुक्रवार की शाम, मतलब है एकदम शानदार। सो मजा कीजिए, एकदम मजे कीजिए, और इसी के साथ मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीकेंड का पूरी तरह से लुत्फ उठाए, अपने दोस्तों से मिलिए, अपने नियर एंड डियर वन से गपशप कीजिए, कुछ अच्छी एक्टिविटी कीजिए, कुक कीजिए, कुछ अच्छा सा खाइए, कुछ अच्छा सा पीजिए, कुछ बाहर जाइए, आई मीन यू कैन लिटरली डू एनीथिंग। सो ये सारी की सारी चीजें कीजिए, मूवीज देख सकते हो घर पे, बाहर सब कुछ कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ वीकेंड, एंड एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और ये गाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर आशा जी का गाया हुआ। अगर कोई गाना अगर मेरा फेवरेट हो तो वो मैं यही कहूंगी, इसी का नाम लूंगी। बात हो रही है इशारों इशारों में दिल, आई डोंट नो, इस फ्राइडे तो हमें कुछ क्लासिक हिट जो है आपके लिए प्ले करना था शो को एंड करने के लिए। सो ये रहा गाना, बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं अब आपसे कल।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पे।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: suku, suku.
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू आई आई

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन में देर रात कार चोरी और घर में घुसने के मामले में दो गिरफ्तार। जी हाँ, ब्रिस्बेन पुलिस ने कल रात ग्रेस और कैनन हिल इलाके में हुई कार चोरी और घरों में जबरन घुसने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक फूड डिलीवरी ड्राइवर की कार छीनकर भागने की कोशिश की थी। इसी के साथ हाउमोलो ओलाकाउतू का ब्रिस्बेन वापसी पर बड़ा बयान है। जी हाँ, पीछे नहीं हटूंगा ये भी कहा गया। स्टेट ऑफ ओरिजिन रग्बी मैच को लेकर माहौल गर्म है। न्यू साउथ वेल्स के स्टार खिलाड़ी हाउमोले ओलाकाउतू अगले बुधवार को ब्रिस्बेन के सनकॉप स्टेडियम में होने वाले बड़े मैच के लिए लौट रहे हैं। 2024 के विवादित मैच के बाद पहली बार यहां खेल रहे हाउमोले ने साफ कह दिया है कि वो मैदान पर किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या पर नई पॉलिसी का असर। ब्रिस्बेन और पूरे ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज से जुड़ी खबर है कि सरकार नई वीजा पॉलिसियों और कड़े नियमों की वजह से इस साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं देख रही है। इसी के साथ क्वींसलैंड सरकार की नई चेतावनी, नाइट्रस ऑक्साइड की बिक्री पर सख्त पाबंदी। जी हाँ, ब्रिस्बेन सहित पूरे क्वींसलैंड में युवाओं के बीच तेजी से फैल रहे एक नशे यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस की बिक्री पर सरकार ने आज से बेहद सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। इसी के साथ ब्रिस्बेन के पास सेंट्रल हाईलैंडर्स में प्रॉपर्टी और गाड़ियों से जुड़ी चोरियां बढ़ी। जी हाँ, ब्रिस्बेन के बाहरी इलाकों और सेंट्रल हाईलैंड्स में पिछले कुछ दिनों में घरों में चोरी और गाड़ियों के पार्ट्स चोरी होने की शिकायतें बढ़ी हैं। वहीं वीकेंड के लिए ब्रिस्बेन का मौसम, आखिर में ब्रिस्बेन के मौसम का हाल आपको बता देते हैं। ब्रिस्बेन में मौसम साफ और सुहावना रहने वाला है। मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, जो कि वीकेंड पर बाहर घूमने या आउटडोर एक्टिविटीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हां, आईएमडी ने मुंबई, ठाणे और पालघर में भारी बारिश को देखते हुए आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ठाणे में दर्दनाक हादसा, बिजली विभाग की लापरवाही पर गुस्सा। मुंबई से सटे ठाणे में कल एक बेहद दुखद हादसा हुआ, जहां पानी से भरी सड़क पर खुले पड़े बिजली के तार की चपेट में आने से एक 17 साल की स्कूली छात्रा की मौत हो गई। वहीं अगले हफ्ते न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। भारत और न्यूजीलैंड के लिए व्यापार और रिश्तों को एक नई मजबूती मिलने वाली है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज सुबह ऐलान किया है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड के ऑफिशियल दौरे पर जा रहे हैं। इसी के साथ राम मंदिर दान चोरी मामले में सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जी हां, अयोध्या के राम मंदिर में दान की गिनती के दौरान पैसे छिपाने के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। आज सुबह इस मामले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 5 आरोपी कैश के बंडल छिपाते हुए साफ दिख रहे हैं। इसी के साथ भारत और जापान के बीच हुआ 10 ट्रिलियन येन का बड़ा समझौता। भारत और जापान ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है। दोनों देशों ने रणनीतिक रूप से एनर्जी सिक्योरिटी और एआई को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। वहीं कम बारिश की वजह से कोयले पर बढ़ी निर्भरता। जी हां, इस साल देश के कई हिस्सों में कम मॉनसून बारिश होने की वजह से हाइड्रो पावर यानी पानी से बनने वाली बिजली के प्रोडक्शन में 19.5% की गिरावट आई है। इसी के साथ अब चलते हैं सीधा इंटरनेशनल खबरों की तरफ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले यूक्रेन के कीव पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन मिसाइल हमला। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूक्रेन से है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे भीषण ड्रोन और मिसाइल हमला किया है। इसी के साथ वेनेजुएला में चमत्कार, भूकंप के मलबे से 8 दिन बाद जिंदा निकला शख्स। जी हां, वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बीच एक हैरान कर देने वाली और राहत भरी खबर आई है। रेस्क्यू टीम ने भूकंप के 8 दिन बाद मलबे के नीचे से एक शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर बनी बात। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर बातचीत में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। ट्रंप के मुताबिक ईरान लगभग हर शर्त पर मान गया है। वहीं यूके में अंतर्राष्ट्रीय सेक्सुअल असॉल्ट नेटवर्क का पर्दाफाश। यूके के नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक बेहद चौंकाने वाले ऑनलाइन नेटवर्क का खुलासा किया है। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय गैंग है जो ऑनलाइन ग्रुप्स के जरिए लड़कियों को ड्रग्स देकर उनके साथ गलत काम करता था। वहीं ब्रिटेन में सोशल मीडिया पर क्रिकेटर्स को मिल रही धमकियों पर बवाल। इंग्लैंड के कुछ पूर्व क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया पर मिल रही जान से मारने की धमकियों के खिलाफ आवाज उठाई है। इन खिलाड़ियों ने हाल ही में क्रिकेट शेड्यूल की आलोचना की थी, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। वहीं ग्लोबल इंटरनेट सिक्योरिटी पर कड़े नियम लागू करने की तैयारी। इंटरनेट की दुनिया से खबर है, कई बड़े देश वीपीएन प्रोवाइडर्स के लिए नियम बेहद कड़े करने जा रहे हैं। नए नियमों के मुताबिक अब वीपीएन कंपनियों को अपनी सर्विस देने वाले देश में लोकल ऑफिस खोलना होगा और एक कंप्लायंस ऑफिसर भी तैनात करना होगा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इतिहास बने वर्ल्ड कप नॉकआउट में सबसे उम्र दराज गोल स्कोरर। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप 2026 से सबसे बड़ी खबर, पुर्तगाल के लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्रोएशिया के खिलाफ राउंड ऑफ 32 के मैच में पेनल्टी से गोल दागकर इतिहास रच दिया। इसी के साथ रोनाल्डो की बहन का बड़ा खुलासा, ये रोनाल्डो का लास्ट डांस है। जी हाँ, इस ऐतिहासिक मैच के ठीक बाद रोनाल्डो की बहन कातिया अवीरो ने एक भावुक बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि जो जानकारी उनके पास है उसके मुताबिक ये वर्ल्ड कप क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पुर्तगाल की जर्सी में आखिरी टूर्नामेंट यानी लास्ट डांस होने वाला है। वहीं स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से रौंदा। ओया जारबाल गोल्डन बूट की रेस में आ गई। जी हाँ, वर्ल्ड कप के एक और नॉकआउट मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। इसी के साथ भारतीय टीम ने 9 साल बाद टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका जाएगी। जी हाँ, क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेट टीम पूरे 9 साल के लंबे इंतजार के बाद टेस्ट सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी। इसी के साथ बैडमिंटन में आया नया 3x15 का स्कोरिंग फॉर्मेट। जी हाँ, बैडमिंटन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सभी डोमेस्टिक रैंकिंग और नेशनल चैंपियनशिप मैच पुराने फॉर्मेट के बजाय नए 3x15 स्कोरिंग फॉर्मेट के साथ खेले जाएंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे मंडे को। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
4: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम जोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
5: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
6: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
5: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
6: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
5: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
6: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
5: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
6: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
7: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2000।
8: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
9: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
8: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
9: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
8: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
9: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
10: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
11: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
12: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना

आसान हो। दिल को चुराने वालों आँख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

हेलो वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसी बने हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.0 FM ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असीं ढेर सारिया थोड़े नाल थोड़ियां मेरिया अपनियां सब दियां कुछ यादां ताज़ियां कर लवांगे, कुछ किसे दियां गल्लां कर लवांगे, कुछ गीत ज्यादा सुनांगे। फिलहाल थोड़ी पसंद है, मेरी पसंद है, सब दी पसंद है, रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा। बस थोड़े सुनेहियां दा इंतजार है, तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बिरसोनी 101.0 FM साडे फेसबुक पेज है जी, बिरसोनी @bisoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा भी तुहानूं चंगा लगता है वो अपना, पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुण वापस आउंदी हां।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने वन सर वन एम से जी आर जे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए हो। देखो सब तो पहला गल करते हैं फिल्म के बजट की। देखो किसी मूवी का बजट उसके हिट या फ्लॉप होने के पैमाने का सब तो वड्डा फैक्टर होंदा है। फिल्म की कैटेगरी तय करन तो पहला कुछ चीज़ा समझना जरूरी होंदिया ने, जिवें लैंडिंग कास्ट, इस विच प्रोडक्शन दे खर्चे शामिल हुंदे ने जिवें एक्टर दी फीस, क्रू, सैट दे खर्च वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा प्रिंट ते विज्ञापन यानी एडवरटाइजमेंट्स, ते इस विच ओ खर्च आउंदा है जो किसी मूवी दी मार्केटिंग ते प्रमोशन विच खर्च हुंदा हुंदा है। हुण इस तों बाद जानना तुसीं इह हैगा कि किवें तय हुंदा है हिट या फ्लॉप, इही दसदे आं। पर पहले गी सुणो

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
10: सब राज्य खुश है.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसौनी 101.1 जी आज संदेश अलग दिन बने हुए। इस तो बाद हुण आपां गल करदे आं नॉन थिएटरिकल कमाई की। अजकल फिल्मां रिलीज होने तो पहला ही पैसा कमा लैंदियां ने, एक प्रॉफिट राइट्स बेच के मिलता है, जिवें सैटेलाइट राइट्स, इस विच जो चैनल से राइट्स लैंदे ने या वो मूवी दिखाते रहते हैं, डिजिटल राइट्स विच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मूवी बेची जाती है, म्यूजिकल राइट्स विच गाणियां तो कमाई होंदी है। फिर होंदा है इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखो कई बार फिल्म ना बॉक्स ऑफिस से कमाई के मामले विच एवरेज होंदी है, पर इन्हां राइट्स की वजह नाल प्रोड्यूसर्स मुनाफा कमा लैंदे ने, पर मूवी दे हिट फ्लॉप या एवरेज होण दा वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस कमाई के हिसाब नाल ही तय होंदा है।

0: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Oh, if it's-

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हूं। जी मैं वर्ड की गल कर रही हूं, शायद कई ने पहली बार सुनिया होना है, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हुंदा है? स्लीपर हिट तो सिंपल भाषा में समझा जाए तो स्लीपर हिट वो फिल्म हुंदी है जो बिना किसी वड्डे शोर शराबे भारी भरकम प्रमोशन या सुपरस्टार दे रिलीज हुंदी है। शुरुआत में इसकी कमाई बहुत घट पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ ते दम ते फिल्म रफ्तार फड़दी है ते फाइनली बॉक्स ऑफिस ते ब्लॉकबस्टर साबित हुंदी है। जिवें सैयारा, कांतारा, 12वीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

पूरी उम्मीद है कि थानू ये सब कुछ जरूर समझ आ गया होना है ना, जरूर समझ आ गया होना, क्योंकि जेड़े बॉलीवुड लवर है कि बॉलीवुड नहीं मूवी लवर्स है कि नहीं, बेशक को कोई भी बॉलीवुड दी देखते हो, टॉलीवुड दी देखते हो, हॉलीवुड दी देखते हो, साउथ दी देखते हो, उन्होंने ये पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगते होंगे या नहीं तो थोड़ा जरूर वधिया लगे होने हैं। तुसी बाकी जरूर दसो सानू कि थोड़ा किस तरह की जानकारी तुसी चाहते है। क्यों रेडियो बिसवानी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी, तो bisawani@bisawani.com साडी ईमेल आई डी है। सर जेड़ा भी अपना चाहते हो अपनाओ, साडा गलबात जरूर करो। बाकी कल कर दे मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।

0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। फ्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

है रेडियो 79 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट्स भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमक प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 संगीत सरगम नामक कार्यक्रम।

जो मित्रों आप सबको एक बार फिर रेडियो ब्रिजबानी पर तहे दिल से स्वागत है। आज 4 तारीख जुलाई सन 2026 है, जुलाई महीने का पहला प्रोग्राम संगीत सरगम का। और इसी के साथ ही चले, मौसमी दफ्तर ब्रिजबन ने हमें निम्न मौसम की खबर प्रदान की है, जिसके अनुसार आज ब्रिजबन इप्सुई सनशाइन कोस्ट गोल्ड कोस्ट सभी केंद्रों पर धूप निकलेगी। और ब्रिजबन में इस समय तापमान 10 डिग्री है और बढ़कर दिन में 22 हो जाएगा, रात्रि को 12 और 6:40 पर सूर्य उदय होगा और 5:05 पर सूर्यास्त होगा। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपके लिए लेकर चलते हैं कहाँ, आपको बतला देते हैं कि ओकलैंड चलते हैं, जिन्हें बाकी मैंने बतलाया ही नहीं ना। इप्सुच में 22 है, 6 रहेगा रात्रि को, 10 हवा का रफ्तार। और गोल्ड कोस्ट में 22 रहेगा दिन में, रात्रि को 12 हवा का रफ्तार 14। और सनशाइन कोस्ट में 22 दिन में, रात्रि को 14 हवा का रफ्तार 19। ओकलैंड न्यूजीलैंड में बारिश हो रही है हल्की हल्की, और 16 रहेगा दिन में, रात्रि को 9 हवा का रफ्तार 21। 7:30 सूर्य उदय हुआ है, 5:15 सूर्यास्त होगा। वेलिंगटन में समय समय पर धूप निकलेगी, अन्यथा आकाश पर घटा छाई रहेगी। 11 रहेगा दिन में, रात्रि को 9 हवा का रफ्तार 47 किलोमीटर पर आवर। नेंडी में धूप निकलेगी और निकल चुकी है, यहाँ 6:40 पर सूर्य उदय हुआ है, 5:50 पर सूर्यास्त होगा। धूप निकलने के साथ साथ ठंडे 25 है दिन में, रात्रि को 19 हवा का रफ्तार 18। लंबा समय ज्यादातर धूप निकलेगी, 26 दिन में, रात्रि को 17 हवा का रफ्तार 19। और सुबह में ज्यादातर धूप निकलेगी और यहाँ पर 24 दिन में, रात्रि को 18 हवा का रफ्तार 23। चलते हैं भारत द्वीप, चलते हैं सर्वप्रथम अमृतसर, जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पर धूप निकलेगी और 6 रहेगा हवा का रफ्तार, विंड स्पीड इज 6 एंड द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे विल बी 38 डिग्री सेंटीग्रेड। रात्रि को 30, कोई राहत नहीं है खास दोस्तों। और नई दिल्ली में बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, वर्षा होगी, वेरी हॉट 36 मैक्सिमम 30 मिनिमम 6 विंड स्पीड। 5:28 पर सूर्य उदय होगा, 7:21 पर सूर्यास्त होगा। फिर आपको ले चलते हैं कहां पर, मुंबई में बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, वर्षा होगी, दिन और रात में कोई फर्क नहीं है 27 डिग्री और 29 रहेगा हवा का रफ्तार। तो ये थे कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम के खबर। स्टूडियो का नंबर है 3279-1701 और मेरा मोबाइल नंबर है 0411-127-035। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ सुनना भी चाहते हैं, फिर भी आप कॉल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ सुबह का बेला है, ठंड है, लोग खाट पर लेटे हुए कंबल खींच कर पड़े हैं भाई। और एक बात और बतला दूं कि हमारे पास एक सुख सूचना है, जिसे 7 के आसपास हम लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ राव जी छुट्टी पर हैं और उनसे अब मुलाकात 3 हफ्ते बाद होगी, यानी कि अगस्त महीने में लगभग। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सुबह का बेला है और देखते हैं भाई टेक्स्ट मैसेज किसका आया है। चलो जी टेक्स्ट मैसेज आ गए सुबह के बेला में, हम भी जागे बहुत जल्दी, आज 4:15 उठे हैं। अच्छा जी, अमला जी गुड मॉर्निंग, आपने कहा गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, और आपको भी हम वहाँ तो गुड आफ्टरनून है, और उम्मीद कर रहा हूँ आप ठीक ठाक होंगी। और इसके साथ साथ हमारे जितने श्रोतागण प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन सबको तहे दिल से स्वागत करते हुए चलें पहले गीत के साथ। और पहला गीत जो आज हम बजाने जा रहे हैं, मोहम्मद फैज अदा कर रहे हैं इसे। अब पूरे हफ्ता बीत गए, किसे मिलने की चाहत थी और खासतौर से लिसनर्स से मिलने की चाहत है, तो हम आ गए भाई, झोरी झंडा भरकर आपके सेवा में, सुनते हैं इस गीत को।

बात अगर ऐसा ही है तो भाई नंबर मिला ले, अगर नंबर किसी का है जिससे मिलने की चाहत हुई है आपका, तो फिर देखते हैं कमाल की बात होगी, क्या बात है। रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी प्रसारण है और जो 1700 AM के माध्यम से हम सेमरिन माइल रॉक्स ब्रिजबन ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, ये उम्मीद के साथ कि आप हमारा साथ देते रहेंगे और हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें। बहुत प्यारा सा गीत है, जा जा के कहाँ मिन्नते फरियाद करोगे, हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे। सुर प्रदान कर रहे हैं कुमार सानू साहब अलका जी के साथ, सुनते हैं, आनंद लीजिएगा।

0: जी मित्रों, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। देखिए, हमेशा ये सब बातें याद रहती हैं। कोशिश चाहे लोग कितना भी क्यों ना कर लें, किसी से अगर आपका दिल लगा है तो भाई लाख भी कोशिश करें ये सोचने के लिए कि नहीं, हम उसको नहीं याद करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है अक्सर कि हम उन्हें जरूर याद करते हैं। और याद रहता है उस जगह की याद रहती है जहाँ कभी घूमे थे एक साथ, जहाँ कहीं चाय पिए थे, कॉफ़ी पिए थे, या किसी फंक्शन में मुलाकात हुई थी। कपड़े का रंग क्या था, बाल कैसे बनाए थे, ये सब बातें याद होती हैं।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: मित्रों, मैं परमानंद हूँ, संगीत सरगम प्रोग्राम को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चले आगे बढ़ते हुए, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, क्या बात है। और अनुराधा पोटवाल जी हैं कुमार सानू जी के साथ।

ये मित्रों, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता वो हो तुम। अभी आप सुन रहे थे, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें। एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स अब बजाने जा रहा हूँ मैं आपके लिए। और एक गाने कुछ ऐसे होते हैं जिसके बारे में मैं क्या आपसे कहूँ, तो हम इसे सुन ही लेंगे अभी और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा। कोई और गाना नहीं, सच्ची कहानी पर आधारित गीत बजाने जा रहा हूँ आपके लिए। और गीत को अदा करेंगे कोई और नहीं मगर अलका याग्निक जी, और साथ दे रहे हैं उदित साहब। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना,

नहीं, जो गीत बजाना चाहता था वो नहीं आया है। हम चलते हैं तेरे नाम हमने किया है, अलका जी की आवाज़ में हम इसे सुनते हैं और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा। इट्स अ लॉन्ग सॉन्ग, 6.26 का है, बजाते हैं आपके लिए।

0: तो मित्रों कैसे लगा? मैं जानता हूं कि उमेश चंद्रा जी OAM को ये गीत बेहद पसंद है, इसके साथ साथ आप लोगों को भी ये गाना बहुत पसंद है और मुझे भी बेहद पसंद, क्योंकि सच्चे कहानी पर आधारित ये गीत था। और उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छा लगा होगा। आप रेडियो ब्रिजबानी सुन रहे हैं, मैं हूं परमानंद, ये संगीत सरगम नामक कार्यक्रम। एक बात बोलना उचित समझता हूं यहां पर कि भाई जब अंदर अंदर किसी के बारे में कुछ ख्याल आए, अंदर अंदर आप किसी से प्यार करते हैं, तो हिम्मत जुटा कर उनसे बातें कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता, वक्त चला जाता है, बातें अंदर रह जाती हैं, फिर वो समय भी नहीं आएगा कभी लौट कर कि जहाँ कुछ मौका मिले बोलने का। तो इसी के साथ ही रेडियो ब्रिजबानी की घड़ी में 7:01 हुआ है और आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं, जिसका प्रसारण हम 1700 AM के माध्यम से 7 Mile Rocks ब्रिजबेन ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं। शनिवार की सुबह है, खूबसूरत सा मौसम आज है, तापमान कम है लेकिन ठंड नहीं है। मैं तो भाई 3:30 उठा हूँ और बाहर जब गया तो झोंकों के साथ हवा बह रहा था यहाँ ब्रिस्बेन में, अन्यथा जब बाहर आए फिर जब गाड़ी में बैठा देखता तापमान 10 डिग्री, मैंने बोला यार मुझे ठंड तो लग नहीं रहा है, क्या बात है। तो आपको भी ये ऊर्जा हो जाएगा, सुबह तड़के उठने की कोशिश करें। अब हम चलते हैं फिजी द्वीप से कुछ समाचार हमें मिले हैं। पहला है तो ये है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीजी जी फिजी जा रहे हैं, सोमवार को वहां पहुंचेंगे और वो कई विषयों पर फिजी के प्राइम मिनिस्टर माननीय रंबुका जी से कुछ बातें करेंगे। 5 से लेकर 7 जुलाई तक के फिजी में रहेंगे अपने मिनिस्टरों के साथ, जिसमें पेनी वोंग भी शामिल होंगी, कई विषयों पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी बात जो अच्छी है बात है वो है ये कि एक लेख फिजी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन न्यूज से मुझे 30 जून को प्राप्त हुआ था, जिसमें कहते कि फिजी नेशनल्स विल नो लॉन्गर हैव टू पे फॉर टूरिस्ट एंड सर्टेन मेडिकल वीजा टू इंडिया अंडर न्यू वीजा फी वेवर इंट्रोड्यूस्ड बाय द फिजी हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन सुवा। द हाई कमीशन अनाउंस दैट फ्रॉम 29 June 2026 टूरिस्ट वीजा, मेडिकल वीजा एंड मेडिकल अटेंडेंट वीजा इश्यूड टू फिजियन नेशनल्स विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। The decision eliminates the fees previously charged for these physical visas. According to the High Commission in Suva, the waiver applies only to tourist, medical and medical attendant visas issued through its office in Suva. तो ये फिजी का नागरिकों के लिए सूचना था और खबर थी। जो लोग यहाँ सुन रहे अपने परिवार को आप बतला सकते हैं कि अब भारत सरकार टूरिस्ट और कुछ मेडिकल वीजा जो हैं वो वीजा को फ्री कर रहे हैं, मगर उसकी अर्जी आपको सुबह में ही लगानी पड़ेगी और फिजी पासपोर्ट होना चाहिए ये दर्शाने के लिए कि भैया फिजी के नागरिक हैं, हम नहीं जो फिजी से हैं यहाँ आकर बसे हैं। अगर हमारे पास वो पासपोर्ट नहीं तो हमें कोई ऐसे वहाँ मुफ्त में नहीं मिलेगी, हमें पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये था कुछ समाचार फिजी का। और अब हम चलते हैं, हमारे पास एक शोक सूचना है जिसे मैं बांटने जा रहा हूँ। मैं परमानंद हूं और शोक सूचना के साथ बड़े अफसोस के साथ ये ऐलान करना पड़ रहा है कि मेंसफील्ड ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के मोहसिन और मुजफ्फर के पिता तथा नौशाद अली के भाई यानी साउथ सीज क्लीनिंग सर्विसेज के डायरेक्टर मेंसफील्ड ब्रिस्बेन के जनाब इरशाद अली के इंतकाल हो गई। जनाजा के बाद माउंट ग्रेवेट कब्रस्तान 620 मेंस रोड नेथन में आज 1:30 बजे से यानी 1:30 PM से शो को दफनाया जाएगा। इसे दोबारा सुनिए, बड़े अफसोस के साथ ऐलान करना पड़ रहा है कि मेंसफील्ड ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के मोहसिन और मुजफ्फर के पिता तथा नौशाद अली के भाई यानी साउथ सीज क्लीनिंग सर्विसेज के डायरेक्टर मेंसफील्ड ब्रिस्बेन के जनाब इरशाद अली के इंतकाल हो गई। जनाजा के बाद माउंट ग्रेवेट कब्रिस्तान 620 मेंस रोड नेथन में आज 1:30 बजे शव को दफनाया जाएगा। इसी के साथ शोक सूचना समाप्त हुआ। चलें मौसम पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आज के मौसम की खबरों में साउथ ईस्ट क्वींसलैंड के लिए मैं कवर करूंगा, 6:40 पर सूर्य उदय हुआ है ब्रिस्बेन में और 5:05 पर सूर्य अस्त होगा। हवा का रफ्तार ब्रिस्बेन में 10 km/h अनुमान किया जा रहा है। दिन में 22 डिग्री तापमान रहेगी, रात्रि को 12, इप्सुच में 22, दिन में रात्रि को 6, हवा का रफ्तार 10, गल्फ कोस्ट में धूप निकलने के साथ साथ 22 दिन में रात्रि को 12 हवा का रफ्तार 14 और सनशाइन कोस्ट में 22 रहेगा, दिन में 14 रात्रि को 19 रहेगा हवा का रफ्तार। तो ये कुछ खबरें, शोक सूचना, मौसम के खबर भी आपको सुनाए हमने। और लोग शायद सोचते होंगे राव जी क्यों नहीं आए, राव जी इस समय बिजी हैं, व्यस्त हैं, 3 हफ्ते तक वो बाहर रहेंगे, 3 हफ्ते के बाद कॉल करेंगे फिर आएंगे। तो चलो हम पहले 2 विज्ञापन सुन लेते हैं, फिर पुराने गीतों का कार्यक्रम हम आपके लिए पेश करेंगे।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानूं फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
0: अभी समय 7 मिनट हुए हैं, 7:00 संगीत सरगम कार्यक्रम में अब वक्त आया पुराने गीतों का। पुराने गीतों में हम अक्सर उन गीतों को आपके सामने में मैं पेश करता हूँ इस ख्याल से, कुछ भूले बिखरे रंग में होते हैं, कभी पुरानी यादों को ताज़ा कराने की कोशिश, लेकिन हर में एंगल होता है रोमांटिक का, तो रोमांस भरा गाने हैं। तो चलो सुनते हैं आज का पहला गीत, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अशोक भाई केम छो, जय सच्चिदानंद, चलते हैं आपके लिए, अभी बजा रहा हूँ ये गाना। पर्दे पर है आशा परेख जी, वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेस, और साथ में हैं इनके सुनील दत्त साहब। रफ़ी जी का खूबसूरत आवाज में ये रचना आपके लिए।

0: क्या बात है मित्रों, मैं भी तो इसी में रम गया था। इतना बढ़िया गाना, इतना खूबसूरत लगा मेरे को सुन के। और जब लता जी बाद में आ जाती हैं तो कंप्लीट होता है ना इक्वेशन, इसका मतलब है ये फुल कमिटमेंट टू ईच अदर है। और ये लव जो है, प्यार है, अनुभव करने की बात है, वही हो रहा था गीत के साथ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे गाने हम जब बजाते हैं ना तो आपको कुछ बीते हुए कल याद आ जाते होंगे। और ऐसे कल जब याद आते हैं तो बहुत सारे बातें जो हैं वो सब याद आ जाते हैं। आँख कभी भर आती है, कभी सोचते हैं यार वक्त चला गया, कहीं ऐसे हुआ। और कहते हैं ना फिर बोल है कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, टाइम वंस लॉस्ट नेवर कम्स बैक। तो ये कुछ बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं खबर के साथ। फिर और तीन पुराने, आज हम थोड़ा मैंने ज्यादा पुराने गीत को लेकर आया हूँ आपके लिए।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घर की उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लिए नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर में 98,000 तो भी वध नवे घर के निर्माण का राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाने लिए बुनियादी ढांचे में $2 बिलियन का निवेश कर रहे हैं। असी रिहायश लिए 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दी है। लोड़वंदा लिए 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हैं। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हैं। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: Samsung ki mala pe sim room mein. LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
0: दोस्तों 17 मिनट हुए हैं 7 बजकर, चलते हैं आगे बढ़ते हुए पुराने गीतों को जारी करते हुए। ख्वाब तो हम बहुत देखते हैं, कुछ ऐसे ख्वाब या स्वप्न हम देखते हैं जिसको हम याद करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हकीकत में वो स्वप्न बदल जाए। तो फिल्म आदमी में 1968 में लता जी ने बहुत खूबसूरती से वेदा रहमान जी के लिए गीत गाई थी, वो है कि कल के सपने आज भी आना। सुनते हैं भाई और सुनाते हैं आपको।

0: जी मित्रों, कल के सपने आज भी आना, साजन को भी साथ मिलाना, क्या बात है। ये चाहत होती है, ख्वाहिश होती है।
1: एल के आर इवेंट प्राउडली प्रेजेंट्स वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026। दिस जुलाई एक्सपीरियंस द मैजिक लाइव। Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: Ab mitro, aage badhte hain. Chale, Golmaal naye film ka purane andaaz mein geet hai jise पर्दे पर पारस रावल जी और सुष्मिता जी अदा कर रहे हैं, और बहुत खूबसूरत सा शेखर साहब हैं, और शेखर जी के साथ स्नेहा, ये दोनों सुर प्रदान कर रहे हैं।

0: गया।
1: जी मित्रों, बहुत बढ़िया सा गीत था, पुराना गाना नए अंदाज में आपको सुना रहे थे हम रेडियो ब्रिजबानी के माध्यम से, और उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा हो। चलें एक खबर, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
1: जय मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबानी, आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं, मैं परमानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, गाइड फिल्म का ये गाना, मुंह से छल किए जाए, देखो हाय सैया बेईमान।

0: जी मित्रों, संजीवनी जी अपनी आवाज में इसे अदा कर रहे थे। वैसे इस गीत को लता जी अदा की हैं, लेकिन आज उनकी आवाज में हमें सुन रहे थे। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छा लगा होगा। 7:30 बजे हैं, समय हुआ जन्मदिन के खबरों का, और जन्मदिन के खबरों के साथ मैं परमानंद उपस्थित हुआ हूं। जिन लोगों को आज जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह, उनको हम याद कर रहे हैं। आपकी जोड़ी सदा सलामत रहे, उनको हम यही बोलेंगे, ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप अगर कोई फंक्शन में जा रहे हैं, कुछ पार्टी शार्टी कर रहे हैं, तो एंजॉय इट, ओके। हर दिन ऐसे नहीं आता है, समय आता समय चला जाता है, लेकिन कहीं महफिल में बैठे हुए हो प्यार मोहब्बत के साथ तो अच्छा लगता है। तो चलो, इंटैया भाई का भी टेक्स आया, क्या करते हैं। अच्छा, राम राम, नाइस सेलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, कैन यू प्लीज प्ले कहाँ है तेरा मुसाफिर। अच्छा इंटैया भाई, मैं देखता हूँ समय अगर मिला तो मैं ये बजा दूंगा, नहीं तो अगले शनिवार को डेफिनेटली बजाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दरिया किनारे एक बंगलो, इसे अदा कर रहे हैं किशोर दा। लता जी, आज सुबह का शायद ये अंतिम पुराना गीत होगा, और फिर हम नए गीत की तरफ चलेंगे।
1: और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए

0: जी हाँ, दरिया किनारे क्या बात है, दो गाना था ये, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा आपको। और चलें शोक सूचना को हम एक बार फिर आपके लिए बजाते हैं। बड़े अफसोस के साथ ये ऐलान करना पड़ रहा है कि मेंसफील्ड ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के मोहसिन और मुजफ्फर के पिता तथा नौशाद अली के भाई यानी साउथ सीज क्लीनिंग सर्विसेज के डायरेक्टर मेंसफील्ड ब्रिस्बेन के जनाब इरशाद अली के इंतकाल हो गई। जनाजा के बाद माउंट ग्रेवेट कब्रिस्तान 620 मेंस रोड नेथन में आज 1:30 बजे यानी 1:30 PM शव को दफनाया जाएगा। दोबारा बड़े अफसोस के साथ ये ऐलान करना पड़ रहा है कि मेंसफील्ड ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के मोहसिन और मुजफ्फर के पिता तथा नौशाद अली के भाई यानी साउथ सीज क्लीनिंग सर्विसेज के डायरेक्टर मेंसफील्ड ब्रिस्बेन के जनाब इरशाद अली के इंतकाल हो गए। जनाजा के बाद माउंट ग्रेवेट कब्रिस्तान 620 मेंस रोड नेथन में आज 1:30 बजे शव को दफनाया जाएगा। इसी के साथ शोक सूचना समाप्त हुआ और आगे बढ़ते हैं, एक विज्ञापन बजाएंगे। विज्ञापन के बाद हम आपके लिए कुछ और मजेदार गीतों को लेकर आएंगे, तो चलिए सुनते हैं एक खबर को।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज
0: आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कुछ मिले जुले गीतों का, रोमांटिक सॉन्ग का समय फिर आया है। इस बार हमको दीवाना कर गए सोनू निगम साहब आ रहे हैं तुलसी कुमार जी के साथ।

0: ये मित्रों, हमको दीवाना कर गए आप सुन रहे थे, और चले आगे बढ़ते हैं विज्ञापन की तरफ। विज्ञापन भी बजाना बहुत जरूरी है
1: भाई। मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: और मित्रों, इस समय 7:45 हैं। आगे बढ़ते हुए चलें, मोहम्मद फैज जी एक बार फिर आ रहे हैं। गीत के बोल हैं लाजवाब।

जय मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चलें, एक हल्की सी बरसात गीत के बोल हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगे, इसको सुनाते हैं आपको। रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान है दोस्तों, 1700 AM के माध्यम से हम 17 Mile रॉक्स ब्रिजबन ऑस्ट्रेलिया से ये प्रोग्राम को लेकर आए हैं आपके लिए, और ये उम्मीद के साथ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे जो गाने हम बजा रहे हैं अभी।

0: ये मित्रों, हल्की हल्की सी बरसात आ गई, आप सुन रहे थे। और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हुए सुनते हैं एक और मज़ेदार गीत। ये दिवट है और इस गीत के बोल हैं, तेरी उम्मीद ना करते हुए।
1: दिल ने ये मान लिया है तुम ही हो मेरी मंजिल, न चाहते हुए भी तुमसे उम्मीदें रखता है दिल।

0: मित्रों, तेरा प्यार हर पल दिल में है, आप सुन रहे थे। अब चलें आगे बढ़ते हैं। शादी होने वाली है, इसको देखते हैं कितना मिनट का है। अगर थोड़ा सा शायद पूरा नहीं बजा पाए तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करेंगे कितना बज जाता है। तो चलो सुनते हैं इस मजेदार गीत को, शादी होने वाली है।
1: अबे गया तू तो, ओ नच्चो सारे यारो, आखिरी दिन है इसका।

0: यह मित्र इसको यहीं रोक रहे हैं, अभी रानी क्रेसेंस प्रोग्राम में इसे पूरा करेंगे और चलें आगे बढ़ते हैं, जबकि 8 बज चुका है अभी से लेकर ठीक 8:15 के बीच रानी क्रेसेंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम भेंट कर रहे हैं भाई। मौसम खूबसूरत है, बच्चों की छुट्टी है, शॉपिंग का दिन है, क्या बात है। फिर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सेल अभी भी एक्सटेंड किया गया रानी क्रिएशन शॉप में, और यहां पर अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट आपको कपड़े पर मिलेंगे, और साथ में ज्वेलरी इज गोइंग फ्रॉम $16 अ सेट एंड सारीज फ्रॉम $15 ईच। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं, गिफ्ट हुए हैं, जो आपको डिस्काउंट रेट पर मिलेंगे। तो फॉर नेक्स्ट टाइम शॉपिंग रिमेंबर द नेम रानी क्रिएशन। तो चलें विज्ञापन पहले सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: मित्रों, यहाँ पर हर अवसर के लिए आपको कपड़े मिलेंगे, चाहे शादी कर रहे हैं, चाहे पार्टी कर रहे हैं, चाहे कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, या फैब्रिक को आपको जरूरी है नवग्रह का पूजा वगैरह के लिए, यहाँ सब आपको मिलेगा। सजने सजाने के बहुत सारे ज्वेलरीज हैं जो क्लियर हो रहे हैं रानी क्रिएशन शॉप में। इसके साथ साथ बहुत सारे एक्सेसरीज भी हैं, टेबल्स, शूज फॉर दूल्हा जिसको बोलते हैं, दूल्हे के लिए जूती है, और स्टॉल्स वगैरह। शादी वगैरह कर रहे हैं तो कभी कभी लोग पूरा सामान होता नहीं तो बोलते हैं क्या करें यार, तो रानी क्रिएशन को कॉल कर लें, आकर मिल लें, देख लें और खरीद बिन कर लें, तो पूरा काम हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, वो गाना पूरा करते हैं।

तो मित्रों ये था पूरा हो गया गाना, हम आगे बढ़ते हैं। चलें अब आनंद राज आनंद ने एक नया फिल्म का लिए गाना गाया है, वो आपके लिए हम बजाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। दीवाने हैं गीत के बोल हैं, आनंद राज आनंद, फिल्म जंगल का गाना है, सुनाते हैं आपको।

जय मित्रों, साथ में अमृता थी और उम्मीद कर रहा हूँ गाना आपको पसंद आया होगा। जंगल फिल्म का गाना है, बिल्कुल नया फिल्म है जो अभी आप सुन रहे थे गीत, और आगे बढ़ेंगे, अगला गीत भी है वो बजाएंगे आपके लिए। मगर उससे पहले आपको कह दूं कि रानी क्रिश्चियन स्टोर में मेंस वेयर का बहुत बड़ा रेंज है, यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। पूरे परिवार के साथ आप आकर यहाँ पर खरीद बीन कर सकते हैं, जैसे इंडो वेस्टर्न सूट्स मिलेंगे, शादी के जोड़ा मिलेगा आपको, और यहाँ पर आपको मेंस का जो कुर्ता पैजामा है ये सब मिलता है। तो कभी कभी लोग सोचते हैं सिर्फ वुमेन का या औरतों का कपड़े बेचते हैं, नहीं नहीं मेंस का बहुत सारे कपड़े हैं और पूरे एक्सेसरीज भी उनका है, जूती से लेकर स्टॉल वगैरह, इंडो वेस्टर्न आउटफिट, और मैं क्या बोलूँ, आपको आकर देखना पड़ेगा, टेबल्स भी हैं, तो ये सब यहाँ पर मिलते हैं। तो पता है 33 बालाकलावा स्ट्रीट उलंगेबा, सप्ताह के सातों दिन खुले रहते हैं, सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक, आज सोमवार से शनिवार, और सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक रविवार को ये खुलते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगला गीत के साथ। अगला गीत है इश्क तुम पे ऐसे।

ये मित्रों आने लगा है इस कदम पे ऐसे आप सुन रहे थे और याद रहे रानी क्रिएशन का शॉप है 33 बालाकलावा स्ट्रीट उलंगेवा में। सप्ताह के सातों दिन खुले रहते हैं, हर प्रकार के कपड़े आपको मिलेंगे और पूरे परिवार के साथ आप आकर चाहे लेडीज का शादी के सूट हो या मेंस का हो सब कुछ यहाँ पर मिलता है। और चलें आगे बढ़ते हुए अगला जो गीत है उसके बोल हैं तुम सुबह तुम सब।

0: जी मित्रों, 14 मिनट होने वाले हैं 8 बजकर, और गीत को ही छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन आपको बतला दें कि रानी क्रिएशन शॉप में शादी अगर कर रहे हैं तो मेंस आपको शेरवानी सूट्स मिलेंगे, इंडो वेस्टर्न कुर्ता पैजामा, इसके साथ साथ स्टोल और शूज प्लस टेबन्स, ऐसे मेंस का है। और आपको बतला दिए थे पहले प्रोग्राम में जब शुरुआत में कि साड़ीज आर गोइंग फ्रॉम $15 ईच और ज्वेलरी फ्रॉम $16 अ सेट, और इसके साथ साथ अप टू 50% डिस्काउंट लगा हुआ है बहुत सारे कपड़ों पर। तो अगले शनिवार तक आज्ञा दे, नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू, और खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करें। और साथ में शॉपिंग के लिए याद रखें रानी क्रिएशंस 33 बालाक्लावा स्ट्रीट उलंगेवा, जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। चलो विज्ञापन के साथ समाप्ति करते हैं। हैव अ लवली एंड एंजॉयबल वीकेंड, गॉड ब्लेस यू, एंड फॉर लॉट ऑफ सेविंग्स ऑन योर पर्चेसेस विजिट रानी क्रिएशंस।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशन एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगेबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगेबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: मित्रो, इस समय लगभग 18 मिनट होना चाहते हैं 8 बजकर, और आप मेरा साथ रहेगा ठीक 8:30 बजे तक। और चलें, अगला गीत का समय आया है। अगला गीत जो है उसके बोल हैं चुंगलियां, बहुत प्यारा सा गीत है, इसको कई बार हम बजाए लेकिन जी नहीं भरता, इसको सुनते रहते हैं। जावेद अली साहब आ रहे हैं साहिर अली बग्गा जी के साथ में, एक गीत को लेकर।

तो मित्रों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चले खबर ले लेते हैं। खबर के बाद फिर हम आपको कहाँ ले चलेंगे आपको मालूम है, कुछ और एक गीत, शायद एक दो गीत हो जाएंगे और।

ये मित्र है हीरो, तू है जीरो है, और समय भी भाग रहा है। एक और गीत सुनाना चाहता था लेकिन देखता हूँ कितना समय है, समय तो बहुत कम दिख रहा है, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं टाइटल सॉन्ग।

मित्रों, इस गीत को यहीं छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि समय नहीं इजाजत देता है इसको और आगे बढ़ाएं। अगले शनिवार को बाकी गाने में लेकर आऊंगा जब, तब इसे पूरा करेंगे। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा। शॉर्टली न्यू ईयर विल कम विद टॉप 10। अंटिल देन हैव अ लवली वीकेंड। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजवाणी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम

सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। सबसे पहले हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन। जी हाँ, मतलब वीकेंड आ गया है, मस्ती झूमने का वक्त आ गया है और ये सारी चीजें हम करने वाले हैं, मतलब सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं। वीकेंड अपने आप में एक बहुत अच्छा दिन है, मतलब अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जो है वो होती है, मतलब आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है उठने का, जल्दी जल्दी जाने का, खाने का टाइम नहीं देखना होता किसी चीज का कि जल्दी जल्दी करना है, सब कुछ एकदम सुकून से, आराम से, इत्मीनान से आप कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाट वीकेंड इज। सो आइए वीकेंड को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम वीकेंड को सेलिब्रेट करते हैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से। जी हाँ, हम लाते हैं आपके लिए एक स्पेशल सा प्रोग्राम जिसका नाम है टॉप 10 हॉट 10। इस प्रोग्राम में हम आपको 10 चुनिंदा गाने सुनाते हैं, लेकिन कोई नॉर्मल गाने नहीं, ना ना ना ना ना, नॉर्मल गाने नहीं होते, बल्कि बहुत ही स्पेशल गाने, ट्रेंडिंग गाने और जो सब जगह पर एकदम बवाल मचा रहे होते हैं, बट ऑल इन अ गुड सेंस, उन्हीं गानों को हम आपके लिए लेकर आते हैं। सो कोई भी गाना नहीं, बल्कि बहुत ही खास गाना आपको सुनने को मिलता है यहाँ पर। तो आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत होगी 10वें नंबर के गाने के साथ, जो कि है कॉकटेल 2 का गाना। नाउ मूवी जो है ऑलरेडी रिलीज हो गई है और अच्छा काम कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पे अच्छा काम कर रही है। इसमें है शाहिद कपूर, इसमें है रश्मिका मंदाना और साथ में है कृति सेनन। जबरदस्त मूवी है या नहीं है, कितनी अच्छी एक्सपेक्टेशंस पर सही उतर पाई है, ये तो आप ही बताओगे मुझे, लेकिन जो लोगों का कहना है वो हम आपको बताएंगे बाद में। पहले सुनाएंगे गाना, उसी का गाना बंधु 2.0। नाउ दिस सॉन्ग इज अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग, जो कि पहली मूवी में भी था, तुम ही हो बंधु। यहाँ पे इसमें थोड़ी सी छेड़ाछाड़ी करने की कोशिश की गई है, इसमें कुछ अच्छा एलिमेंट लाने की कोशिश की गई है, बट लेट मी टेल यू, वो नहीं हो पाए उसमें कामयाब। सो या बट ये गाना ट्रेंड कर रहा है, सो ऑफ कोर्स हम आपके लिए प्ले करेंगे।

जी हाँ दोस्तों, तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस बताया जा रहा है जो कि कॉकटेल पहली थी और इस वाली कॉकटेल में, कि कॉकटेल वन की कहानी ना काफी रियलिस्टिक थी। जी हाँ, मतलब उसमें जो भी कैरेक्टर था, जो भी कहानी थी, जो भी स्टोरी थी, जो भी राइटिंग थी, वो सेंस बनाती थी। जी हाँ, ऑफकोर्स जो एक्टिंग की एक्टर्स ने उसी की वजह से मूवी लेजेंडरी बन गई, और ऑफकोर्स वो मूवी जो है वो अपने आप में एक बेंचमार्क है। लेकिन जब कॉकटेल टू आई तो सबसे पहले लोगों की एक ही शिकायत थी, वेल ऑफकोर्स आई एम नॉट गोना टेल यू द स्टोरी, बट द थिंग इज कि यहां पर लोगों का कहना है कि ये स्टोरी सेंस नहीं बना रही और कहीं कहीं तो आपका खून भी जलेगा, खासकर जो लेडीज हैं, जो लेडीज हैं उनका खून जल सकता है इसकी कहानी को देखकर कि क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। या बट द थिंग इज कि इसमें सारे के सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लाइक रश्मिका मंदाना, शाहिद कपूर, कृति सैनन, ऑल द एक्टर्स आर रियली गुड, बट कहानी वो लैक कर रही है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपने कॉकटेल देख ली है, आई मीन कॉकटेल टू, और अगर आप लोग इससे इम्प्रेस्ड हैं जरूर बताइए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं क्या ही कर दिया इस मूवी में, तो भी हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर बताइएगा। आपकी फीडबैक और आपका रिव्यू जो है वो बहुत ही कीमती है। इसी के साथ कॉकटेल टू है थिएटर्स में लगी हुई, गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। अगला गाना है जवानी तो इश्क होना है, ये मूवी भी लगी हुई है अभी भी थिएटर्स में, और ये है वरुण धवन, मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े की कहानी। इट्स अ क्लासिक मसाला डेविड धवन मूवी, एंड आपको पता ही है उसका क्या मतलब है। सुनते हैं इसका गाना और फिर करते हैं और

0: say whoa.
1: जी हाँ दोस्तों, तो वाओ और से वाओ तो हो गया है, मूवी कितनी वाओ है वो तो आप ही हमें बता सकते हो। लेकिन अगेन, जैसे मैंने कहा कि डेविड धवन जो कि अपनी मसाला मूवीज को लेकर हमेशा से फेमस रहे हैं, राइट, उनकी जो मूवीज है वो काफी चर्चित रही हैं अर्ली 2000 और लेट 90s में। सो ऑफकोर्स वैसी ही मूवी क्रिएट करने की कोशिश उन्होंने की है, और दैट टू फॉर हिज ओन सन, मतलब वरुण धवन और डेविड धवन दोनों जो फादर सन ड्यूओ जो है वो आपके लिए ये मूवी लेकर आए हैं। अगेन, आप ये मूवी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब इट्स अ हैप्पी गो लकी फनी टाइप की मूवी। अब ऑफकोर्स उसका मतलब क्या है, यू नो वेरी वेल। इसी के साथ ये मूवी आप देख सकते हैं थिएटर्स में, और अगला गाना मैं अब आपको सुनाने के लिए तैयार हूं, विच इज जग से लाज, अगेन फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2। सो कॉकटेल 2 जो है वो बॉक्स ऑफिस को तो डोमिनेट कर ही रही है, चाहे फिर रिव्यू कैसे भी हो, बट इसके गाने इस लिस्ट को भी डोमिनेट कर रहे हैं, और ना सिर्फ इस बार की लिस्ट को बल्कि पिछले 3 से 4 से 5 लिस्ट को, मतलब पिछले 3-4 हफ्तों से इसके गाने डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब इसी का गाना है जो नंबर 1 भी है, क्या आप गेस कर सकते हो कौन सा है? चलिए आप गेस कीजिए तब तक। अभी वाला गाना है जग से लाज, और ये है 8वें नंबर का गाना इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल

0: ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਵੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरशे निविया के साथ, और वही प्रोग्राम जो आपको बढ़िया बढ़िया फील कराता है वीकेंड पे, प्लस आपको मजे करवाता है। जी हाँ, आपको अपडेटेड भी रखता है। उसी के साथ हम आ गए हैं दोबारा से, और यहाँ पर जैसे प्रोग्राम चल रहा है हमने 3 गाने आपको सुनाए हैं जो कि 10, 9 और 8 नंबर के हैं। अब जरा चलते हैं सीधा 7वें नंबर के गाने की तरफ, और वो 7वें नंबर का गाना है बेबी डू डाई डू। जी हाँ, बेबी डू डाई डू, और ये है हुमा कुरैशी का गाना इश्क कमीना 2.0। मैं एक चीज देख रही हूँ कि लोगों को मेहनत करने में मजा ही नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी नया बना ही नहीं रहे हैं। सबको 2.0, 3.0, 4.0 बना रहे, क्यों पुराने क्लासिक गानों के साथ ऐसी छेड़छाड़ होती है? आई हैव नो क्लू, बट द थिंग इज कि ये गाना यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है। यू कैन ऑलरेडी इमेजिन कि ओके, कुछ तो होगी इसमें बात। सुनते हैं इसको और फिर करते और बातें।
2: कत्ल करती है निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

ओके ठीक है, मैं कहूंगी कि ये वाला गाना इतना बुरा नहीं है, मतलब ये गाने के साथ जो छेड़ा छाड़ी हुई है, मतलब इसको जो नए तरीके से रिक्रिएट करने की कोशिश हुई है, ये इतनी बुरी नहीं है। ऑल दो बहुत सारे गानों के साथ गड़बड़ हो जा रही है। आई मीन तुम ही हो बंधु को उन्होंने बंधु 2.0 बना दिया, दैट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। और अगर आप उसकी वीडियो देख लोगे देन यू विल बी लाइक क्लासिक वीडियो थी, क्या क्लासी वीडियो थी पहली मूवी में तुम ही हो बंधु की, ये क्या है, व्हाट इज दिस। सो ये वाली फीलिंग आपको इसमें नहीं आएगी फॉर श्योर। ये गाना इतने बुरे हाल से इसके साथ जो है उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया, दैट वी कैन टेल। चलिए इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना मैं आपको सुनाती हूँ। और इसी के साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि अल्फा वीकेंड इज हियर। जी हाँ, मतलब अल्फा वीकेंड जो मैं कह रही थी, मैंने आपको पिछले कल भी बताया था कैसे आलिया भट्ट, शर्वरी बाग और साथ में बॉबी देओल की वो बहुचर्चित मूवी जिसमें वो लिटरली बहुत मार धाड़ तोड़फोड़ करती हुई नजर आएंगी, वो आ गई है थिएटर्स में। यू कैन वॉच इट एंड लेट मी नो क्या आलिया भट्ट इतने बैडास कैरेक्टर में आपको अच्छी लग रही है। ऑल्दो दिस इज नॉट द ओनली बैडास कैरेक्टर शी हैज प्लेड, उन्होंने कुछ दिन पहले और कुछ वक्त पहले जिगरा भी की थी जिसमें कि वो अगेन बहुत ही ज्यादा वायलेंट रोल में नजर आई थी एंड अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। बट दिस इज अ बिट डिफरेंट। क्या है, पहले आपको लगेगा बॉबी देओल के साथ बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग है, बट बॉबी देओल का क्या कैरेक्टर है, बहुत ही शेडी, बहुत ही ग्रे कैरेक्टर है। अच्छा कैरेक्टर है, बुरा कैरेक्टर है, वो आपको सब कुछ मिलेगा देखने को इन अल्फा। सो गो फॉर इट एंड लेट मी नो। और इसी के साथ 6वें नंबर का गाना आप सबके लिए जो कि है व्या करवा दो जी। अरे ठीक है, जिनको करनी है उनका करवा दो, जिनको नहीं करनी है उनका मत करवाओ।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है Top 10 Hot 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट फिर से रिपोर्ट्स की माने तो कर रहे हैं शादी। एंड आपको नहीं पता मिस्टर परफेक्शनिस्ट कौन है बॉलीवुड के, तो मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं पीके की, हम बात कर रहे हैं रंग दे बसंती की, हम बात कर रहे हैं थ्री इडियट्स की और हम बात कर रहे हैं दंगल की। अब ये सारी मूवीज में एक ही चीज कॉमन है और वो है इनके मेन एक्टर, दैट इज आमिर खान। तो रिपोर्ट्स की माने तो कि वो फिर से शादी कर रहे हैं, दिस विल बी His third wedding, जो कि वो लिटरली एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शाय लेडी से कर रहे हैं। मतलब अभी जो उनकी गर्लफ्रेंड है गौरी, उनके साथ उनकी शादी होने वाली है और इसके बारे में उन्होंने खुद भी कहा है इनफैक्ट कि कैसे वो जो है वो शादी करने वाले हैं। सो मिस्टर परफेक्शनिस्ट ऑफ बॉलीवुड इज गेटिंग मैरिड अगेन एंड उनके फैंस जो है वो उनके लिए खुश है, क्योंकि जब भी प्यार पनपता है किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, राइट? सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। इसी के साथ यहाँ पर अगला गाना मैं आपको सुनाती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी आप क्या क्या थिएटर्स में देख सकते हो अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये गाना जिसका नाम है इश्क मस्ताना फ्रॉम मैं वापस आऊंगा मूवी, और ये मूवी बहुत ही प्यारी है, सब इसके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं।

0: तूड़ा।
1: क्या बात है, एकदम देसी पंजाबी विद द हिंट ऑफ पॉप, अ बिट ऑफ क्लासिक टोन। क्या गाना है, क्या गाना है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर अब जरा सीधा चलते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या आप इस हफ्ते अपने नजदीकी सिनेमा घरों में देख सकते हैं। जी हाँ, अल्फा के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैं वापस आऊंगा कैन बी ऑप्शन, जिसका गाना भी आपने सुना, इसमें दिलजीत दोसांझ, वेदांत रैना और साथ में शर्वरी वाघ आपको मिलेंगे। दो प्रेमी जो कि बिछड़ जाते हैं क्योंकि दो देश अलग हो जाते हैं, विच इज हिंदुस्तान और पाकिस्तान। उसके बाद क्या होता है वो आप देखिए, इसी कहानी में, इसी स्टोरी में, इसी मूवी में आपको पता चलने वाला है। इसके अलावा और क्या क्या आप देख सकते हैं थिएटर्स में, आइए जरा वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत सारी मूवीज है। इनफैक्ट आप बच्चों के साथ भी 2 से 3 मूवीज देखने जा सकते हैं, वो मूवीज भी लगी हुई है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फा आप देख सकते हैं, साथ में आप देख सकते हैं कॉकटेल 2, तीसरी मूवी आप देख सकते हैं मैं वापस आऊंगा, चौथी है वेलकम टू द जंगल। जी हाँ, वेलकम टू द जंगल जो कि अक्षय कुमार की मूवी है, इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं उनके अलावा, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी बहुत सारे लोगों को लेके जाना चाहिए इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि इतने सारे स्टार्स को, लिटरली इतने सारे स्टार्स को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ 2 या 3 लोग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सो काफी सारे लोगों को जाइएगा, क्योंकि इसमें इतने सारे एक्टर्स हैं कि आप गिनती भूल जाएंगे लिटरली। बट ये अच्छा काम कर रही है और अक्षय कुमार ने लिटरली थैंक यू भी कहा है अपने ऑडियंस को। इसी के साथ ये एक और मूवी जो है वो है नागा बंधम, जी हाँ, द सीक्रेट ट्रेजर। ये मूवी कैन बी रियली इंटरेस्टिंग, आप इसका ट्रेलर देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कैसी लगी। बट इट्स वेरी यू नो हिस्टोरिकल फैंटेसी, एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर, सब कुछ आपको मिलने वाला है। और या ये साउथ इंडिया की, पैन इंडिया मूवी है लेकिन साउथ की तरफ से आई है, जो कि काफी अच्छी मूवीज बनाते लाइक बाहुबली, KGF, राइट, वैसी वाली मूवीज। इसी के साथ यहां पर जो और मूवीज है जो आप देख सकते हैं जो कि हॉलीवुड मूवीज है, उनमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सुपर गर्ल, जी आप सुपर गर्ल देख सकते हो जाके। और इसी के साथ बेबी डू डाई डू जो कि हुमा कुरैशी की मूवी का आपने गाना सुना था थोड़ी देर पहले, वो भी लगी हुई है, आप उसे भी देख सकते हो। और अगर आप उसके जॉनर को जानना चाहते हो तो एक्शन, क्राइम, मिस्ट्री, थ्रिलर है। जी हाँ, सुपरगर्ल आप देख सकते हो और इसके अलावा 3 और मूवीज है जो आप देख सकते हो, उसमें से 2 आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हो, विच कैन बी वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। यहां पर अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, जो कि है उच्चा लंबा गधा। हमने वेलकम इन द जंगल की बात की है जो कि वेलकम 3 है, वेलकम का तीसरा पार्ट है, तो उसी का गाना इसमें भी पहली मूवी के गाने को लेकर उसका एक और वर्जन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। आप खुद ही बताइए कैसा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले वर्जन में इतना बुरा इन्होंने नहीं किया कंपैरेटिवली टू द अदर सॉन्ग्स जो कि रिक्रिएट होने के चक्कर में गड़बड़ हो जाते हैं।

0: We miss you, Katrina. Bring the bass back.
1: तो आपने सुन ही लिया होगा कि वी मिस यू कैटरीना, ये कहना है किसका? वेल ऑफ कोर्स अक्षय कुमार का, क्योंकि वेलकम में कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार की जोड़ी ने एकदम आग लगा दी थी उस वक्त सिनेमा घरों में। और कैटरीना कैफ ने इस मूवी में काम नहीं किया है, दिशा पाटनी ने किया और बहुत सारे और एक्टर्स ने किया है, बट यहां पर अक्षय कुमार ने मेक श्योर किया कि गाना अगर हम पुराना ले रहे हैं जिसमें ठुमके थे कैटरीना कैफ के, तो यहां पर मिस यू तो कहना पड़ेगा। और मिस तो सच में वो कर रहे होंगे, लाइक कैटरीना कैफ एंड अक्षय कुमार ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज दी है। और ये जोड़ी, मतलब एक टाइम था ये जोड़ी इतनी ज्यादा क्रेजी बन गई थी, इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि सब फीका पड़ गया था। सो या दिस इज इट। इसी के साथ अगला गाना आपको सुनाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं, जिसका नाम है जब तलक। लेकिन जब तलक से पहले मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी मूवीज आप देख सकते हो अपने बच्चों के साथ। पहली मूवी टॉय स्टोरी 5। जी हाँ, टॉय स्टोरी 5 आप देख सकते हो, और ये टॉय स्टोरी का पांचवा पार्ट है। और ये अगर आपने नहीं देखी टॉय स्टोरी तो आपको जरूर देखनी चाहिए, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड मूवीज आउट देयर। सो जरूर देखिए, अपने बच्चों के साथ देखिए, यू आर गना लव इट। जी हाँ, इसी के साथ आप अपने बच्चों के साथ मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स भी देखने जा सकते हैं, जो कि सिनेमा घरों में लग गई है, थिएटर्स में लग गई है, एंड आप मुझे बता सकते हैं आपको कैसी लगी। अगेन, आजकल बच्चों के साथ आप बहुत सारी मूवीज नहीं देख सकते हैं, सो अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है जल्दी से उनको लेकर जाइए, क्योंकि उनको भी मजा आने वाला है काफी इसके साथ, एंड ये तो टाइम भी है। सो ऑफ कोर्स गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। इसी के साथ एक और गाना आप सबके लिए, जो कि है जब तलक, अगेन द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2। सुनिए इसको और फिर करते हैं और भी बात।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 04305258 96, दैट इज 04305258 96। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au, और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ, और इसी के साथ नंबर 2 सॉन्ग पर हम पहुंच गए हैं, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम दिस लिस्ट, एंड दैट इज मस्कारा। मैंने पहले भी कहा है कि कैसे ये गाना पॉपुलर हुआ था। सबसे पहले आलिया भट्ट जो है वो कांस फिल्म फेस्टिवल में जाती है, वो अपने लिए अपने आप को रेडी कर रही थी, अपने लुक को रेडी कर रही थी, तभी वो मस्कारा लगाते लगाते इस गाने को गाती है। सियारा लाई मस्कारा, अखियां मिलाए रखना। जी हाँ, और फिर वो शाउट आउट देती है अपने दो फेवरेट लोगों को, विच इज वेदांग रैना, जहां पर वो बहन बनी होती है वेदांग रैना की जिगरा में, और शर्वरी बाग के साथ तो वो अल्फा कर ही रही थी। सो अगेन दोनों को वो शाउट आउट देती है, एंड अगेन ये मैं वापस आऊंगा मूवी का गाना है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है। इम्तियाज अली ने ना गाने बहुत ही ज्यादा प्यारे बनाए हुए हैं, आई हैव टू से। और मतलब ऐसी ऐसी कोलैबोरेशंस है जो आपको लगेगा एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, वो सब आपको देखने को मिलेगा। सो या मस्कारा सुनते हैं, जो कि बहुत ही खास है गाना, और फिर जाते हैं सीधा नंबर 1 गाने की तरफ, जो कि अगेन बहुत खास है अपने ही मायने में। तो आए सुनते हैं सबसे पहले मस्कारा।

जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपने मस्कारा नहीं लगाया तो लगा लीजिए, क्योंकि इस गाने को सुनने के बाद भी मस्कारा नहीं लगाया तो गड़बड़ है। जी हाँ, एंड आई एम टॉकिंग टू ऑल माई लेडीज। जी हाँ, मस्कारा बहुत ही खूबसूरत चीज है भाई, और जिन मेरे मेल लिसनर्स को नहीं पता है व्हाट मस्कारा एग्जैक्टली इज, आपको मैं बता दूं कि हमारी आईलैशेस को खूबसूरत और बहुत हैवी बनाने के लिए जो प्रोडक्ट लगाया जाता है उसे मस्कारा कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपनी किसी महिला मित्र को वू करना, तो मैं कहता हूँ मस्कारा जो है वो गिफ्ट कर दीजिए और फिर देखिए क्या बात बनती है आपकी। जी हाँ, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलना होगा कब? ऑफ कोर्स मंडे को मिलेंगे, गपशप करेंगे और बहुत सारा फन भी करेंगे, और ऑफ कोर्स आपको रियलिटी चेक भी देंगे, क्योंकि इवनिंग वाइब में बहुत कुछ होता है। न्यूज होती है, खबरें होती हैं, गपशप होती है, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने होते हैं, और आपकी फरमाइशें भी होती है जो कि टॉप 10 हॉट 10 में नहीं होती। बट या, मिलना होगा अब आपसे मंडे को। तब तक के लिए इंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग और नंबर वन गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से। मैंने कहा था गेस कीजिएगा कॉकटेल 2 का कौन सा गाना है जो नंबर वन है। वेल, इट हैज टू बी माशूका, इसके अलावा कोई और कैसे हो सकता है। सो सुनते हैं इसको एंड मिलते हैं अब आपसे मंडे को। बाय, सी यू, टाटा।

0: ਓਏ ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
1: ਓ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
15: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।